सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ ऑल द वे फ्रॉम लंदन। और आज से लेकर 9 बजे तक हमारा साप्ताहिक बहुत ही लोकप्रिय साप्ताहिक प्रोग्राम वेद वाणी। और फिर मैं आपके साथ हो जाता हूँ 10 से लेकर 12:30 बजे तक चुने हुए लोकप्रिय संगीत पुराने फिल्मों से निकाली हुई। A very good morning to you all and welcome once again to Sangeet Ki Jankar on the station 1701 Brisbane, your host Feroz Khan. Looking forward to the pleasure of your company till 12:30 p.m. Of course, this is Brisbane. Beautiful one day, perfect the next. Forecast, maximum 23 the next 5 days and full sunshine. So, looking forward to the pleasure of your company and please stay happy because winter is coming and it's beautiful, nice and cool here in Brisbane. और हाँ, आपको याद रहा दे कि हर रविवार को करीबन 12:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रोए और सू आपके साथ देते हैं। Request, dedication, hello, cheerio, जो भी हो, give them a call. 3279-1701 from 12:30 to 2. They will listen to you because you listen to them. And don't forget, Sashi Chauhan will be with her program from 5 to 7. Ji haan, aise karyakram jisme Sashi aapke liye aapka manoranjan karate hain, aapko information dete hain. To filhal ye hai Sangeet Ki Jankar aur main hoon aapka saathi Feroz Khan. Shuruaat karte hain. Take a memory lane, take a walk down the memory lane. हिट्स ऑफ 50s, 60s एंड निकाली हुई चुने हुए संगीत और आज आपके लिए स्पेशल सिलेक्शंस ऑफ हिट्स ऑफ 50। आपको याद होगा साल 1954 फिल्म नागिन, वैजयंती माला, रवि संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज लता मंगेशकर।

1954 की फिल्म नागिन। संगीत की झनकार पर 40s 50s से निकाली हुई चुने हुए संगीत, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। ऐसे ही गीतों से हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। When melody was supreme, 40s 50s and 60s, और इस बार फिल्म 1953 की फिल्म राज कपूर साथ में नरगिस, शंकर जयकिशन के संगीत पर

0: गीतकार हजरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन लता मंगेशकर के साथ मुकेश 1953 की फिल्म संगीत के जंकार पर 40s, 50s और 60s से निकाली हुई चुने हुए संगीत।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।

बाप रे बाप 1955 के फिल्म बाप रे बाप। जी हाँ, संगीत की झनकार में 40s 50s से निकली हुई संगीत के अंतर्गत आज सुबह आपका परिचय करा रहे हैं, खास तौर पर 1950s से निकली हुई चुने हुए संगीत। ओपी नैयर संगीतकार, आशा भोसले के साथ किशोर कुमार, पर्दे पर किशोर कुमार, 1955 की फिल्म बाप रे बाप। 1950s से निकाली हुई चुने हुए संगीत को आगे बढ़ाते हुए इस बार आपका परिचय करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं द डायनेमिक डुओ ऑफ 1940s 50s एंड 60s, दैट्स संगीतकार लक्ष्मी कांत प्यारेलाल और आवाज मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी सेंग most song for this music director than any other music directors. Ji haan, total of 390 songs he sang for Lakshmikant Pyarelal. He won a Filmfare Award in 1964 for film Dosti. तो चलो फिल्म दोस्ती से निकाली हुई दो चुने हुए संगीत आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आपको याद होगा पर्दे पर संजय खान, उमा और बेबी फरीदा। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। द डायनेमिक ड्यूओ ऑफ लक्ष्मीकांत एंड

film fair, winning combination of Lakshmikant Pyaralal and Mohammad Rafi. Film Dosti, 1964 की film Dosti, और उससे निकली हुई एक बार फिर आवाज मोहम्मद रफी.

अवार्ड विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड मोहम्मद रफी 1964 की फिल्म दोस्ती से निकाली हुई भी आप सुन रहे थे। गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, पर्दे पर संजय खान, उमा और बेबी फरीदा। यह है संगीत की जनकार। हम अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 40s, 50s और 60s से निकाली हुई।

फिलहाल 40s, 50s, 60s से चुने हुए संगीत को आगे बढ़ाते हुए इस बार हम शामिल करते हैं साल 1956 फिल्म भाई भाई। पर्दे पर किशोर कुमार और साथ में निम्मी, आवाज किशोर कुमार, मदन मोहन संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज गीता दत्त। यह है संगीत की झंकार, आपके साथ फिरोज खान, हर रविवार के सुबह 10 से लेकर 12 बजे तक।

1956 की फिल्म भाई भाई पर्दे पर किशोर कुमार और निम्मी, मदन मोहन संगीतकार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, आवाज गीता दत्त, संगीत के जानकार पर वन मेलेडी वॉज सुप्रीम। जी हाँ, उन दिनों संगीत धुन संगीत का जान माना जाता था। और हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं 40s, 50s, 60s से निकाली हुए ऐसे संगीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, जिसमें धुन हो। और अब चलो साल 1956 एक बार फिर। आपको याद होगा मैम साहब, मीना कुमारी पर्दे पर और साथ में किशोर कुमार, मदन मोहन संगीतकार और गीतकार राजेंद्र कृष्ण। जी हाँ, दिल दिल से मिला कर देखो, अपना तो बना कर।

0: गीत की झनकार पर आपके साथ फिरोज खान हमारे स्टूडियो में करीबन एक मिनट हो चुके हैं 10:30 बजकर।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं। सुनते रहिए संगीत की झनकार।
0: जी हाँ, डाउन मेमोरी लेन, साल 1959, फिल्म धूल का फूल, पर्दे पर माला सिन्हा, रजत कुमार, अशोक कुमार और नंदा, एन दत्ता संगीतकार, गीतकार शाहिर लुधियानवी, आवाज मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी नहीं लेकिन महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले। डाउन मेमोरी लेन, वे यू वन यू फर्स्ट हेड दिस सॉन्ग।

0: मेमोरी लेन। इस बार साल 1959, फिल्म धूल का फूल। एन दत्ता संगीतकार, गीतकार शाहिल लुधियानवी, पर्दे पर माला सिन्हा के साथ रजेंद्र कुमार, अशोक कुमार और नंदा, और आवाज महेंद्र कपूर के साथ आशा भोसले।
1: आपने बना लिया है गहरा संबंध, सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि समाज सेवा, इसी स्टेशन के सहारे हम करते हैं आपके साथ। फीजी समाचार, भेंट वार्ता, स्थानीय समाचार, सामाजिक सूचनाएं, सुनते रहिए संगीत की झनका।
2: दिल दिल से मिला कर देखो,
0: यह है रेडियो ब्रिस्बानी 79.1 ब्रिस्बेन, ब्रिस्बेन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
2: अपना तो बना कर देखो,
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। वी प्रेजेंट, यू डिसाइड, यू फोन अस ऑन 3279-1701। वी लिसन टू यू बिकॉज यू लिसन टू अस। तो चलो, साल 1957 इस बार, और फिल्म तुमसा नहीं देखा, शम्मी कपूर और आशा पारेख की फिल्म। ओपन ईयर संगीतकार आवाज रफी और आशा भोसले, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी।

वास्तव में मैं आपके साथ देता हूं रविवार की सुबह 6 बजे से। हर रविवार को सुबह 6 से 7 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं अपने व्यक्तिगत प्लेलिस्ट से निकाली हुई चुने हुए डिवोशनल संगीत। सो इफ यू आर वन ऑफ दोस अर्ली राइजर्स, व्हाई डोंट यू जॉइन मी, स्टार्ट योर संडे मॉर्निंग विद डिवोशनल संगीत फ्रॉम 6 to 7, स्पेशली सिलेक्टेड डिवोशनल संगीत फ्रॉम माय प्लेलिस्ट। उसके बाद 7 से लेकर 8 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हमारा साप्ताहिक इस्लामिक प्रोग्राम सवाल और जवाब हजरत मौलाना फजल दाद के साथ, और फिर बहुत ही लोकप्रिय प्रोग्राम वेद वाणी आप सुन सकते हैं 8 से लेकर 9 बजे तक, और फिर मैं आपका साथ देता हूं 10 से लेकर 12:30 बजे तक संगीत की जानकार, जिसका शुरुआत हम करते हैं चुने हुए लोकप्रिय संगीत 40s, 50s, 60s और 70s से निकाली हुई। उसके बाद करीबन 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक आपके लिए हम पेश करते हैं हिट्स ऑफ 90s और रिसेंट पास्ट हिट। और हाँ, आपको याद दिला दूं कि 12:30 से 5 बजे तक 3279 रेडियो 79.1 के हॉटलाइन 327 लाइन इज ओपन। Roy Singh and Sue are there to receive your call and dedicate songs, your fromages, or say hello to your friends. Why don't you join them? Give them a call, 3279-1701 from 12:30 to 5 p.m. So why don't you make it a date every Sunday morning from 6 to 5 p.m. here on Radio 1701. जी हाँ, यादों में इस बार साल 1949, फिल्म बरसात, RK Production. नरगिस प्रेमनाथ, कैन सिंह, कुकू और निम्मी पर्दे पर, डायरेक्टेड बाय राज कपूर, संगीतकार शंकर जयकिशन, आवाज लता मंगेशकर, हजरत जयपुरी गीतकार। जी हां, साल 1949, वेयर वर यू व्हेन यू फर्स्ट हर्ड दिस सॉन्ग।

संगीत की झनकार पर ये है यादें। गुलाबी झाड़ों की खुनकी, सावन की घनघोर घटाएं, गर्मी की तपती दोपहर, हक्स के खुशबूदार पर्दे और फिजाओं में गूंजता सन्नाटा। अब जिंदगी में यादों की सिवा बचा भी क्या है, सिर्फ यादें। और ये है यादों का सफर।

हर रविवार को 10 से लेकर 12 बजे तक आपके साथ फिरोज खान, और हम आपका यात्रा कराते हैं यादों के साथ डाउन मेमोरी लेन, यानी कि यादों का सफर। मैं जानता हूं ये लंबा है सफर, और इसमें कहीं रात तो होगी, और अगर उस रात को आप गुजार रहे हैं तो खास तौर पर आपके लिए।

तेरे एहसास ने कर दिया ख्वाबीदा मुझे, तेरे एहसास ने कर दिया ख्वाबीदा मुझे, तेरी जुदाई है वजह।

सुनी तारीख रातें, हवाओं का शोर, गरम लूसी भरी हवाएं, कभी कभी माहौल को तोड़ती गहरी जर्द आंधी, माँ का बार बार खांसना, घर की आंगन में बच्चों का शोर, दूर बाजार से आती रेडियो की आवाजें, कभी रफी, कभी लता, कभी मुकेश या तलत महमूद, तो कभी गीता दत्त, उनकी हसीन नगमों की ना खत्म होने वाली अपशार, जो जहन की नाजुक पर्दों को झिलमिलाती रहती है। जी हाँ, यही तो है यादों का सफर।

0: यादें सजा है,
1: यादें गुनाह है,
0: यादें मुस्कुराहट है,
1: यादें ख्वाब है।
0: यादों के सहारे ही व्यक्ति आज से कल में कदम।

रेडियो वो हो जिसमें महबूब का दम हो, रेडियो वो जिसमें महबूबा की सांसें हो, रेडियो वो जिसमें समाज सेवा हो।

0: यह संगीत के जिनका आपके साथ फिरोज खान। अभी थोड़ी देर में आपके लिए हम पेश करेंगे हिट्स ऑफ 90s, लेकिन उससे पहले छोटी सी ब्रेक, कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हिट्स ऑफ 90s।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
0: जी हाँ, वापस आकर एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हैं संगीत के जानकार पर। अभी आप सुन रहे थे कुछ चुने हुए लोकप्रिय संगीत, कमर्शियल से पहले कुछ चुने हुए लोकप्रिय संगीत 40s, 50s और 60s से निकाली हुई, जिसको हम पेश करते हैं हर रविवार की सुबह 10 से लेकर 12:30 बजे तक, और 12:30 से लेकर 5 बजे तक आप सुनते हैं रॉय और सू को। रॉय और सू आर ऑलवेज प्रेजेंट हियर विद एंड स्टैंडिंग बाय विद टेलीफोन नंबर 3279-1701, और आपके रिक्वेस्ट, डेडिकेशन और चिरियोज भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। और आपको याद रहे, फिर 5 से लेकर 7 बजे तक ऑल द वे फ्रॉम वॉलिंगटन शशि अपने स्टूडियोज वॉलिंगटन से लाइव आपके लिए पेश करते हैं विशेष प्रोग्राम, मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड इन्फॉर्मेशन, शशि 5 से लेकर 7 बजे तक। एंड जॉइनिंग मी नाउ इज शशि ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन। शशि, वेलकम टू संगीत की जानकार हियर इन ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन द सिटी विच इज ब्यूटिफुल वन डे एंड परफेक्ट द नेक्स्ट। एक्चुअली द टेम्परेचर विल गो टू 22-23 एंड इज गोइंग टू बी सनी फॉर द नेक्स्ट 5 डेज। आई फील सॉरी फॉर यू, विंडी कोल्ड वेलिंगटन, हाउ आर यू?
3: नमस्ते नमस्ते फिरोज जी, एक बार फिर और आपकी संगीत की जानकार के सभी लिसनर्स को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। और क्या आप बोल रहे हो जी फिरोज जी, आप तो हमारे वेलिंगटन शहर को बदनामी कर रहे हो। इतना भी बुरा नहीं है हमारे शहर और यहाँ का मौसम। तो यहाँ का मौसम अभी तो मैं यही कहना चाहती हूँ फिरोज जी कि धूप निकली हुई है और रह रहकर बादल छा जाती है, हाँ ये मैं कहना चाहती हूँ। मगर हल्की सी हवा भी चल रही है, लोग घूम रहे हैं बाहर, जबकि यहाँ पर लॉन्ग वीकेंड है, किंग्स बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है इस सप्ताहांत। सो हाँ जी, तो हम
0: क्या बात है,
3: आज छुट्टियां मना रहे हैं।
0: आज किंग्स बर्थडे के सेलिब्रेशन आप करेंगे कल मंडे को, और सुनने में आया कि मोदी भाई भी उधर आएंगे कुछ दिनों में।
3: यस जी, तो न्यूजीलैंड अभी बहुत ही खुशी मना रही है, भारतीय लोग जो है खास तौर से। तो मोदी जी आ रहे हैं जुलाई महीने में, सुनने में आ रहा है कि वो आ रहे हैं एंड प्लानिंग इज अंडर वे। सो बट फिर अभी क्या पता है ना, कुछ भी बदल सकता है। सो मगर हम वेरी होपफुल, हम लोग बहुत ही होपफुल हैं कि मोदी जी आएंगे एंड लोगों को उनसे मुलाकात करने का मौका मिले।
0: I'm sure the listeners will be over there, will be looking forward to meeting him. तो चलो, let's talk about program के विषय में बात करते हैं। Thank you for joining in our segment, संगीत की जानकार, शशि।
3: पहली बात तो thank you for promoting एक रंगीन शाम आपके नाम, जो जैसे आपने कहा हर रविवार को 5 बजे से 7 बजे तक मैं आती हूँ। तो आज बस हम करेंगे शुरुआत गीतों से एंड एक सॉन्ग से एंड देन नए और पुराने गीतों का संगम, जैसे मैं हर सप्ताह कहती हूँ, एंड गज़ल वगैरह भी लाती हूँ साथ में, क्योंकि हमारे कई ऐसे लिसनर्स हैं, सभी किस्म के लोग होते हैं जो जुड़ जाते हैं हमारे साथ फिरोज जी, तो उनकी पसंद अलग अलग होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सभी को एंटरटेन करूँ अच्छी तरह। और उसके साथ साथ जो मैं स्पेशल जो लाती हूँ कुछ कुछ बॉलीवुड न्यूज़ भी होते हैं, नॉर्मल न्यूज़ भी होती है, मगर ख़ास तौर से जो पारिवारिक विषय होती है उसमें हम कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जो हम सभी के लिए अच्छी होती हैं, तो सिर्फ लोग जब सुनते हैं तो उसे अपने ऊपर लागू करते हैं। तो आज वैसे तो 5 तारीख जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, आपको पता ही होगा फिरोज जी, तो आज मैं कुछ बातें उसी पर करूंगी।
0: 5 तारीख जून नहीं है, 31st लास्ट डे ऑफ मई है अभी।
3: नहीं, पता है मुझे, पता है मुझे, पर मैं क्या कह रही हूँ क्योंकि मैं तो फिर बीच में आऊंगी नहीं ना, तो उसके बाद में मेरा प्रोग्राम तो बाद में आएगी, तो इसीलिए मेरे प्रोग्राम अगले हफ्ते 7 तारीख जून को रेडियो ब्रिजवानी की जो ये प्रोग्राम है 7 तारीख जून को मैं वापस आऊंगी, तो बीच में 5 तारीख तो बीच में आएगी ना, तो इसीलिए मैं अपने तरफ से कुछ जानकारी लोगों को देना चाहती हूँ।
0: हाँ
3: नहीं दैट्स ओके, तो इसमें हम बातें करेंगे कि ये क्या है, क्यों मनाई जाती है, इस दिन को क्यों इतना खास महत्व दी जाती है वगैरह वगैरह। एंड ऑल्सो देर इज अनदर टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू टच ऑन टूडे इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब यानी पीछा करना या तंग करना किसी को। तो न्यूजीलैंड में अभी हाल ही में पिछले सप्ताह इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक अपराध बन गया है ये, एंड सो उसके बारे में मैं कुछ जानकारी दूंगी लोगों को, क्योंकि हमारे लिसनर्स विश्व में सभी तरफ लोग सुनते हैं ना रेडियो ब्रिजवानी। तो ये न्यूजीलैंड की बात हुई, मगर आपको तो पता ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया में भी ये जो है ये दिस इज अ लो देयर, कि वहां पे भी लोग दिस इज स्टॉकिंग इज एन आपराधिक अपराध, मीन्स यू कैन बी चार्ज्ड फॉर स्टॉकिंग समवन, किसी के पीछे पीछे किसी का वो करना या किसी को तंग करना, किसी के बारे में अफवाहें उड़ाना और किसी के पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाना, और ये सभी किसी को किसी भी तरह से किसी की रेपुटेशन डैमेज करना, ये सब इलीगल है। एंड अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ रिपोर्ट कर दी और ये पता लगा दिया गया कि हाँ ये सच है, सो एंड सो आपके लिए ऐसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनको चार्ज हो सकती है।
0: अच्छा,
3: तो ये हमारे लोगों को जानना बेहद इम्पोर्टेंट है। सो एनीवे ये आज शाम को, और बस यही है हमारा प्रोग्राम।
0: सिर्फ आपका हाइलाइट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात कर रहा हूँ शशि जोखन से, जो संगीत की जिनका नहीं, लेकिन 79 ब्रिस्बेन पर 5 से लेकर 7 बजे तक आपके लिए पेश करते हैं इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट, ऑल इंडियन वॉइस, ऑल द वे फ्रॉम वेलिंगटन। शशि बहुत बहुत शुक्रिया। पर जाते जाते हमारा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, मैं जानता हूँ आपका सेगमेंट करीबन लास्ट हाफ एन आवर में आप भूले बिसरे नगमे पेश करते हैं, राइट?
3: राइट,
0: उसमें जब भूले बिसरे नगमे आप पेश करें तो बता देना लोगों को, अपने श्रोताओं को, कि हर रविवार को 10 से लेकर 11:30 बजे तक फिरोज खान आपके लिए पेश करते हैं हिट्स ऑफ 40s, 50s and 70s। हमको प्लग दे देना।
3: बेशक।
0: बहुत लंबी प्लग नहीं, ओके। एनीवे थैंक्स वेरी मच शशि, थैंक्स फॉर जॉइनिंग इन, एंड विल टॉक टू यू नेक्स्ट संडे इफ यू आर अवेलेबल।
3: यस, आई शुड बी ओके भाई। मगर चलते चलते मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुरा कर कहते हैं शुक्र है मालिक का, किस्मत उनकी गुलाम हो जाती है। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फिरोज जी, आपने मुझे अपने कार्यक्रम में आने का मौका दिया। नमस्ते।
0: थैंक्स शशि, लुकिंग फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू योर प्रोग्राम दिस इवनिंग फ्रॉम 5 to 7 o'clock। अभी आप सुन रहे हैं शशि जोखन को, जो रेडियो 79 ब्रिस्बेन पर हर रविवार को 5 से लेकर 7 बजे तक मिले जुले प्रोग्राम आपके लिए पेश कर, तो इंतजार कीजिए 5 से लेकर 7 बजे तक शशि के साथ। तो फिलहाल संगीत के झनकार पर अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए वादे के मुताबिक आपके लिए द अदर गोल्डन ईयर्स ऑफ बॉलीवुड हिट्स ऑफ 90s। वेलकम वंस अगेन टू संगीत की झनकार। on this radio 1701 Brisbane. Your host Firoz Khan, looking forward to the pleasure of your company. आप सब सुनने वालों को फिरोज खान का नमस्ते, अदाब, अस्सलाम और सत श्री अकाल। आप अक्सर हमारे साथ देते हैं रविवार को और हम आपका साथ देते हैं, इसलिए

Oh boy, the chemistry of Alka Yagnik and Udit Narayan. Amir Khan ke film Man Se Nikali Hui, आज रात्रि की पहली नगमा आप सुन रहे थे संगीतकार संजीव दर्शन, गीतकार समीर और आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक। आपने हमारा साथ देते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से, चुने हुए लोकप्रिय संगीत 90s से निकाली हुई, ऐसे गीत जो हम मन से निकाली हुई। आज रात्रि की पहली नगमा आप सुन रहे थे संगीतकार संजीव दर्शन, गीतकार समीर और आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक। आपने हमारा साथ देते हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं माला से, यानी कि गीत माला से, चुने हुए लोकप्रिय संगीत 90s से निकाली हुई, ऐसे गीत जो अपने हिट

0: गीतकार गीतकार समीर, फिल्म मन।
1: प्यार का नशा है ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश।

दीपमाला के अंतर्गत भी आप सुन रहे थे फिल्म मन से निकाली हुई, आमिर खान की फिल्म मन से निकाली हुई, उदित नारायण और अलका याग्निक। और अब दीपमाला में शामिल करते हैं 90s के एक और डायनामिक ड्यूओ, संगीतकार नदीम शर्मा, गीतकार समीर। और इस बार फिल्म जीना सिर्फ तेरे लिए की टाइटल सॉन्ग, आवाज कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक और बाबिल सुप्रियो। संगीत की झंकार पर आपके साथ फिरोज खान, गीतमाला। ऐसे गीत जिसको एक बार सुनकर बार बार सुनने को जी चाहता है, ऐसे गीत जो हिट परेड में अपनी छाप छोड़ चुके हैं, ऐसे ही गीतों से अपने कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं।

डर अबाउट 90s हिट्स ऑफ 90s गीत माला में फिल्म हमारा दिल आपके पास है अलका याग्निक के साथ कुमार सानू संजीव दर्शन संगीतकार गीतकार जावेद अख्तर। अब चलो एक बार फिर संगीतकार दीप शर्मा गीतकार समीर वही फिल्म जीना सिर्फ तेरे लिए। अलका याग्निक के साथ उदित नारायण।

जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, जो भी हो, लेकिन फिल्म का नाम जीना सिर्फ मेरे लिए। उदित नारायण के साथ अलका याग्निक संगीत की जानकार के अंतर्गत गीत माला में एंड अनदर वंडरफुल वॉइस ऑफ अनदर खान नुसरत फतेह अली खान फिल्म करतूस। ये है संगीत के साथ जनकार आपका साथ फिर।

नुसरत फरीदी खान, फिल्म करतूस, गीत माला के अंतर्गत संगीत की झंकार पर। एक बार सुनकर नुसरत फतेह अली खां की आवाज दूसरी बार सुनने को जील चाहता है। तो इस बार फिल्म और प्यार हो गया, लेकिन इस बार नुसरत फतेह अली खां के साथ अनुराधा पाडवाल और उदित नारायण। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। गिव मी माय 90s बैक, यू कैन कीप योर 2000s

0: अक्सर आजकल YouTube में बहुत ही आसानी से आप कोई भी गाना देख सकते हैं, कोई भी क्लिप देख सकते हैं। इसीलिए संगीत की झंकार पर हम आपके लिए फिल्म के नाम, गायक के नाम, संगीतकार, गीतकार सबके नाम देते हैं ताकि आप YouTube में जाकर क्लिप्स को देखें। और ये थी फिल्म और प्यार हो गया, नुसरत फतेह अली खां के साथ उदित नारायण। और आजकल बहुत कम सुनने को मिलता है अनुराधा पौडवाल भी। अगर मौका रहे इस क्लिप को आप जाकर देखें YouTube पर, फिल्म और प्यार हो गया, कोई जाने कोई ना जाने।
1: दिलों को झंकृत करें,
2: हवाओं में फिजाओं में दिलकश संगीत के रंग बिखेरे।
0: और ये है संगीत की झंकार, रेडियो 71.1 FM।

0: ये है रेडियो ब्रिस्बानी 71 ब्रिस्बन, ब्रिस्बन्स फर्स्ट 24/7 हिंदी रेडियो स्टेशन।
1: अपना तो बना कर देखो।
0: जी हाँ, अपना तो बना कर देखो। We present, you decide. You phone us on 3279-1701. We listen to you because you listen to us. और इसके साथ साथ संगीत के जानकार को हम ये छोड़ रहे हैं अगले रविवार को 10 से लेकर 12:30 बजे तक एक बार फिर हमारा और आपका साथ जमा रहेगा इस स्टेशन संगीत की जानकार 71 ब्रिस्बन पर। तब तक के लिए फिर उस खान को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506। 3279-2506।

0: Good afternoon and welcome back to Radio Brizvani. Namaskar. Kemchu sasikal. Assalamu alaikum aur बुला कहते हुए एक बार फिर रोहित सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहेगा आज का कार्यक्रम में। आपका हमारा साथ रहेगा ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक। और अभी आपने अपना रेडियो खोला आप सभी का हार्दिक स्वागत हम करना चाहेंगे रेडियो ब्रिजवानी पर। मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। 2 घंटा का रंग रंग कार्यक्रम शाम का सफर में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
1: हर काम के साथ होती है, हर काम के साथ
0: हमेशा की तरह। फोन नंबर 3279-1701 पर यह कार्यक्रम आपके लिए हम लाइव अपने स्टूडियो से पेश कर रहे हैं। जुड़े रहेगा हमारे साथ ही कभी से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटा का रंगारंग कार्यक्रम में। खूबसूरत से मिले जुले संगीत का कार्यक्रम अपने स्टूडियो से हम लाइव आपके लिए पेश कर रहे हैं। देश विदेश में आप हैं, इंटर स्टेट में आप हैं, ब्रिस्बेन में आप हैं, ब्रिजवानी ऐप या इंटरनेट द्वारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रेडियो ब्रिजवानी पर। याद कीजिएगा मैं हूँ रोहित सिंह, ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा शाम का सफर में। खूबसूरत सा दिन है दोस्तों आपके बाहर और खूब कड़क धूप है, थोड़ा ठंड है 19 डिग्री। शायद आप भोजन कर रहे होंगे या गाड़ी में सफर कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं साथ हो जाएगा ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा रेडियो ब्रिजवानी पर।

आपका हमारा साथ रहेगा। याद कीजिएगा दोस्त साथियों, रेडियो ब्रिज वाली मैं हूँ रोहित सिंह। दो घंटे का खूबसूरत सा कार्यक्रम लेकर अपने स्टूडियोज में लाइव आपके लिए हम उपस्थित हैं।

साथी कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। चलते हैं हमेशा की तरह स्थानीय कलाकार, और आज के हमारे स्थानीय कलाकार हैं फिजी के एडी विल्सन। उनकी आवाज में बहुत ही खूबसूरत सा गीत।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

साथिया कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे हैं। अभी से लेकर 2:30 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा। जुड़े रहेगा हमारे साथ 2 घंटे के लिए। लाइव कार्यक्रम अपने स्टूडियो से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। इंटरस्टेट में आप है सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न या ब्रिस्बेन में आप है, हमारा साथ जरूर दीजिएगा रेडियो ब्रिजवानी पर। खूबसूरत से गीत आप सभी के लिए रेडियो ब्रिजवानी पर रोहित सिंह के साथ। एल्बम का नाम काटा लगा।

दोस्तों, आज उम्मीद करता हूँ कि यह नगमा आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। रोहित सिंह के साथ रेडियो ब्रिजवानी पर शाम का सफर में साथ दीजिएगा, ठीक है, अभी से लेकर 2:30 बजे तक। आप हमें हमारा मोबाइल पर भी फोन कर सकते हैं या लैंडलाइन पर 3219-1701। 2:30 बजे तक साथ दीजिएगा।

और ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक याद कीजिएगा हमारा साथ है रेडियो ब्रिजवानी पर। चलते कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए और भी खूबसूरत से गीत हमारे पास हैं जो हम आपके लिए बारीकी से पेश कर रहे हैं और आप सिर्फ बैठकर लुत्फ़ उठाइएगा खूबसूरत गीतों का।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव Under the Stars, तरुण रनिगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
2: और दोस्तों साथियों, याद कीजिएगा रोहित के साथ एक कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवानी पर सुन रहे। चलते हैं, आप सभी को बताना चाहते हैं कि फिजी बोर्न पर्सन टू समिट माउंट एवरेस्ट में दोस्तों साथियों, सीनियर न्यू साउथ वेल्स के स्ट्रेटजिस्टिक बैकग्राउंड साइकोलॉजिस्ट और साथ में भी फिजी बोर्न शिखा राजू ने अबाव 8,000 मीटर्स इन फ्रीजिंग air staff stretch of Himalayas known as the death zone theories mean little to her. So Fiji born Shikha Raju, इन्होंने Mount Everest को climb किया है और वे कहती हैं कि Everest was the ultimate test of everything she studied about resilience, leadership and human performance under pressure. तो world's highest peak पर during her grueling descent from the highest world's highest peak, after suddenly she began losing her sight, that was the most important lesson that emerged from there. And Everest is the way of stripping away ego, Shikha Raju ne kaha hai. So Fiji born first Indian to sathi yaad kijiyega to summit Mount Everest, standing atop the 8,848 meter peak after years of preparation and sacrifice. Aur yaad kijiyega, Fiji born Indian hai, Sydney mein rehti hai Shikha Raju. Bahut bahut badhai ho, best wishes from every listener in of Radio Brizwani aur hamare parivar ke bhi aur se, wishing you the very best. Aur I'm hoping that I can मैं होप करता हूँ कि इनके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू अगर मुझे मिलेगा, मौका मिलेगा, तो इनके साथ शायद अगले रविवार या किसी दिन भी जैसे मुझे मौका मिलता है और ये वापस आ जाती हैं सिडनी में, शिखा राजू, इनके साथ आई विल ट्राई एंड हैव अ कन्वर्सेशन और एक इंटरव्यू आप सभी को सुनवाना चाहेंगे हम। तो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक या वीक आफ्टर नेक्स्ट आपके लिए हम कोशिश करेंगे कि हम शिखा राजू के साथ एक छोटा सा इंटरव्यू आप सभी को सुनवाए। तो चलते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, याद कीजिएगा रोहित सिंह के साथ है ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक। कुणाल गंजावाला की

ये खूबसूरत संगीत हम डेडिकेट करते हैं शिखा राजू के लिए, सिडनी के फिजीबोन फर्स्ट पर्सन टू क्लाइम अप माउंट एवरेस्ट।

याद कीजिएगा रोहित के साथ ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं, साथ दीजिएगा ठीक है अभी से लेकर 2:30 बजे तक।

यादगिर जगह रोहित सिंह के साथ ये कार्यक्रम आप सभी रेडियो ब्रिजवाणी पर सुन रहे हैं। अलका याग्निक, कुमार चानू और उदित नारायण की आवाज में फरमाइश करने वाले हैं शिवा श्रीमती गंगा और गीता प्रसाद। आप सभी के लिए

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
2: Get ready Brisbane, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम। लाइव म्यूजिक Under the Stars, Tarun Raniga, Ricky from Sydney और Diman Roy लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार Bollywood musical concert, full of energy and classical hits. And wait, रात को आसमान चमकेगा एक unforgettable fireworks display. सबसे best part, entry is absolutely free, including parking. तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, Saturday, June 13. ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: और इस गिफ्ट हम याद करना चाहते हैं अपने बहुत अच्छे दोस्त एक बार फिर शिवांश वैद्य, रवि प्रताप को। आप दोनों के लिए बहुत ही खूबसूरत गीत।

हो सकता है ये प्यार तो है।

रोहित के साथ है रेडियो बिजवानी पर और स्टूडियो के घड़ी के अनुसार ठीक 2 बज चुका है। आधे घंटे में कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, साथ जरूर दीजिएगा ठीक अभी से लेकर 2:30 बजे तक।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर, याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: दिल में है धड़कन, धड़कन में है तू ही तू।
6: और आप सभी सुन रहे शाम का सफर रोहित सिंह के साथ, ठीक है 2:30 बजे तक, फिर 2:30 बजे से 5 बजे तक आप सू के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। साथ जरूर दीजिएगा, ठीक है 5 बजे तक।

और दोस्तों देसी गीत के साथ साथ हम अपने कार्यक्रम की समाप्ति पर पहुंच गए। उम्मीद करता हूं आज का कार्यक्रम आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हमारी और आपकी मुलाकात अगले रविवार की शाम ठीक 12:30 से फिर होगा। इजाजत दीजिए और रेडियो बंद मत कीजिएगा, थोड़ी देर में आप सभी के साथ कार्यक्रम सुन सकेंगे। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अगले सप्ताह मुलाकात होगी, तब तक के लिए रुक्षित हो रहा मैं। हैव अ प्लेजेंट आफ्टरनून एंड द बेस्ट ऑफ द वीक फॉर नेक्स्ट वीक। और तब तक के लिए नमस्ते, शब खैर और विनाकार।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: है रेडियो 79.1 जिसके द्वारा आप हर रोज हमारे हिंदुस्तानी कार्यक्रम को सुनते हैं। याद रहे हमारा टेलीफोन नंबर है 3279-1701। अगर आप सूचनाएं या एडवर्टीजमेंट भेजना चाहते हैं तो आप कृपया हमारे पास फैक्स करें। हमारा फैक्स नंबर है 3279-2506, 3279-2506।
3: Hello and good afternoon, listeners. You're listening to Radio Brisbane on 1701 kHz AM band from our studios, from 17 Mass Rock, Brisbane 230 in our studios.

जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों को देखकर खुश देखकर मिलती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक नेक काम है। अच्छे कर्म कभी वेस्ट नहीं जाते, वे किसी ना किसी रूप में लौटकर वापस आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा प्रेम और प्यार सभी से बांटते चलो। हैप्पी वीकेंड। आप सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आपके साथ दिया रोहित सिंह ने, चलते हैं अब आप का साथ है सू के साथ संडे शाम सफर पर, अभी से लेकर ठीक 5 बजे तक आपका हमारा साथ। बहुत समय नहीं लेते हुए आज का पहला गीत आप सभी के लिए जा रही है, जो आज रेडियो ब्रिज बनी सुन रहे हैं।

प्यारे से गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना प्यार बांटते चलो। दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्वानी, आपकी अपनी पहचान। इस वक्त हमारे स्टूडियोज में 3:15 बज चुके हैं और प्रोग्राम शुरुआत तो हमने कर दिया है, लेकिन हम आपसे एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं सिर्फ आज के लिए, क्योंकि आज हमारे पास बहुत बहुत लंबी लिस्ट आ गई है दोस्तों। शायद हम एक से ज्यादा फरमाइश आपकी नहीं ले पाएंगे, और हो सके तो आप हमें थोड़ा छोटा सा गाना दीजिए। बहुत लंबी गीत अगर आप देंगे तो आई गॉट अ वेरी बिग लिस्ट, क्योंकि आज हमारे ब्रिस्बेन में बहुत सारे से मेहमान हैं जो वेडिंग पर आए हैं, यूएसए से, सिडनी से और कनाडा से, जो हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपना फरमाशी भी सुनना चाहते हैं। और साथ साथ में हमारे पास वेडिंग अनाउंसमेंट भी है, बर्थडे अनाउंसमेंट भी है, बहुत से हमारे पास लोगों की सिडनी से, ब्रिस्बेन से, सभी की फरमाइशें भी है। तो चलते हैं एक और गीत सुनते हैं, उसके बाद हम लेकर आ रहे हैं आज का पहला अनाउंसमेंट।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और दोस्तों चलते हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं फरमाइशी प्रोग्राम, लेकिन आज सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किससे। आज हमारे जो ब्रिस्बेन में नए दंपति हैं, यानी कि न्यूली मैरिड कपल जिनकी शादी हुई है लास्ट इस वीकेंड पर, यानी कि कल रिसेप्शन हुआ था, शादी तो शुरू हो गई हल्दी से लेकर कल रात तक वेंसडे से, और वो है अनीस और जैन की शादी बड़ी धूमधाम से। ऑक्सली राइस के रशीद अली के बेटे और अजहर के छोटे भाई अनीस की शादी बहुत से लोगों के बीच में बहुत सुंदर से हुई। शादी माहौल जो था बहुत बड़ी थी, और कल रात का जो रिसेप्शन था अबाउट 1000 पीपल के बीच में बहुत धूमधाम से, वन ऑफ इट्स काइंड रिसेप्शन और वन ऑफ इट्स काइंड वेडिंग। तो चलते हैं अनीस और जैन, आप दोनों को हम क्या कहना चाहते हैं शादी पर। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई, आपका नया जीवन खुशियों और मुस्कानों से भरा रहे अनीस और जैन। और साथ साथ में आपके बहुत से रिश्तेदार आए हैं ऑकलैंड से, न्यूजीलैंड से, कैनेडा से और यूएसए से, सिडनी से, सभी ने आपको बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद भेज रहे हैं, दुआ भेज रहे हैं आप दोनों के लिए। दिल से दिल तक का जो बंधन है अनीस और जैन, आप दोनों को प्यार का वो अद्भुत संजोग है, हर फेरे में वो खुशियाँ की बरसात है, बस यही शादी की सबसे बड़ी सौगात है। अनीस और जैन, आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। रेडियो ब्रिस्बेन टीम की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशन, साथ साथ में जितने भी आपके रिश्तेदार आए हैं वहाँ कनाडा से, अमेरिका से, न्यूजीलैंड से, सिडनी से, सभी ने आपको याद किया है। और साथ साथ में खास बधाई आपको भेज रहे हैं वहाँ सिडनी से सनी और रमीजा, जो किसी कारण सनी की माँ की डेथ हो गई है, और उन्होंने बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद आप दोनों के लिए भेजे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, और उन्होंने शादी में नहीं आ पाए तो they are very upset about it. I'm very sorry about Sunny's mom too. तो आने को तैयारी थी लेकिन लास्ट मिनट किसी कारण सनी की माँ की डेथ हो गई है, और उन्होंने बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद आप दोनों के लिए भेजे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कह रहे हैं, और उन्होंने शादी में नहीं आ पाए तो they are very upset about it. I'm very sorry about Sunny's mom too. तो आने को तैयारी थी लेकिन लास्ट मिनट में उनकी माँ की भी डेथ हो गई है।

और अनीस जैन, हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि मुबारक हो आप दोनों को शादी। और एक बार और है कि अनीस और अजहर के डैड रिताश अली हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। फ्यू इयर्स अगो उनकी अचानक से डेथ हो गई है। दोनों बच्चे थोड़े से इमोशनल हो गए थे और इसके बारे में हम क्या कहना, कुछ भी कह नहीं सकते। इट वॉज वेरी सैड, इट्स वेरी सैड। अगर उनके अबू होते तो आज कितने खुश होते अपने बेटे के शादी देखकर। खैर कोई बात नहीं, ऊपर से वो देख रहे, आपको दुआएं भेज दिए हैं। साथ साथ में सनी और रमीजा वहाँ सिडनी से आप दोनों को बहुत सारे से प्यार आशीर्वाद भेजे हैं। चलते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हुए, हम बहुत समय नहीं लेंगे, बहुत सारे से रिक्वेस्ट है हमारे पास। आज पाक रीच की ओर हम चलते हैं, जहाँ मैं सुन रहे हैं अजमुना फारूक। राजमुना फारूक, आप सुनना चाहते हैं अगला गीत मेहंदी हसन की आवाज़ में।

मेहंदी हसन की आवाज का ब्यूटीफुल गजल सॉन्ग और इसकी फरमाइश करने वाले थे पाकरी से फारूक और अजमून. थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक आउट देयर टू. आप सुन रहे हैं रेडियो बिस्पानी 71 किलोहर्ट्ज पर हमारे स्टूडियो 17 बाल्स रॉक ब्रिस्बेन से. एंड आई लाइक टू थैंक एवरीबॉडी इन द वेडिंग हु हैज गिवन मी द बेस्ट फीडबैक यस्टरडे इन द वेडिंग ऑल द टाइम इन द वेडिंग डे. सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दैट फीडबैक. हम चलते हैं सैक्रामेंटो यूएसए की ओर जहाँ हमारा प्रोग्राम सुन रहे ललिता गौतम और कामिनी नारायण साथ में. आप दोनों सुनना चाहते हैं अगला गीत जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात.

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग जिंदगी भर नहीं भूलेगी बरसात की रात, और जिसे फरमाइश करने वाले थे सैक्रामेंटो यूएसए से कामिनी नारायण और साथ साथ में ललिता गौतम।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स।
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन, बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: फिल्म नतीजा का गीत की फरमाइश आई है हमारे पास, 1969 की फिल्म नतीजा, राफी और हेमलता की आवाज में। फरमाइश करने वाले हैं पाकिस्तान से आसिक, आसमा, रोन एंड एशरीन। दिल करने लगा है प्यार तुम्हें।

क्या बात है, लोगों का क्या चॉइस है। बहुत प्यारे प्यारे गीत आप सभी ने आज फरमाइश कर रहे हैं। इस गीत को फरमाइश करने वाले थे पाकिस्तान से आशिक आसमा एशरीन एंड आशिफ। आप सुन रहे हैं रेडियो विस्वानी, आपकी अपनी पहचान। और 12 मिनट हो गए हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर, तो चलते हैं दोस्तों अगला गीत की ओर हम बढ़ते हैं। और अगला गीत की फरमाइश हमारे पास है जो हमारे ब्रिस्बेन के मेहमान हैं, बहुत से लोग जो आज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं ऑक्सली राइज में रशीदा अली के घर पर, जिनमें है यास्मीन फ्रॉम सिडनी, नाजमीन फ्रॉम सिडनी, शेरिन फ्रॉम विशाड, आमिना फ्रॉम एडमंटन कैनेडा, फिरोजा फ्रॉम कैनेडा, रोजलिन फ्रॉम डेली सिटी यूएसए। और आप सभी की फरमाइश है, सुनते हैं कौन सा फरमाइश है।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग लग जाकर जिसकी फरमाइश हमेशा हमारे पास आती रहती है, लेकिन इस गीत की आज फरमाइश हमारे ब्रिस्बेन में जो मेहमान है वेडिंग में आए हैं और ऑक्सली राइज में रशीद अली के घर पर हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिसमें यास्मीन फ्रॉम सिडनी, नाजमीन फ्रॉम सिडनी, शेरिन फ्रॉम विशार्ट, आमिना फ्रॉम एडमेंटन कैनेडा, फिरोजा फ्रॉम कैनेडा, रोजलिन फ्रॉम डल सिटी यूएसए, और आप सभी की हम आप सभी का स्वागत करते हैं एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी ऑन रेडियो विस्वानी। आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान रेडियो विस्वानी 79.1 किलोहर्ट्ज़ पर। 18 मिनट हो गए हमारे स्टूडियोज में 3 बजकर।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
3: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्सोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
0: चलते हैं अगली फरमाइश की ओर, बढ़ते आज फिल की ओर चलते हैं। अनवर और शेरुल, आप दोनों की पसंद पर सुनते हैं फिल्म अमानत से लिया गीत। 1977 की फिल्म अमानत आपने फरमाइश किया है मोहम्मद रफी, मनोज कुमार और प्रदीप साधना के लिए। मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं।

रफी साहब के आवाज का गीत जिसे फरमाइश करने वाले थे अनवर शहरोल फ्रॉम आज फील। हम चलते हैं दोस्तों शिकागो की ओर। फरमाइश है हमारे पास हमेशा की तरह अमला सिंह की ओर से। थैंक यू अमला फॉर ज्वाइनिंग मी। आपके लिए अगला गीत आपकी पसंद पर।

0: बहुत प्यारा सा गीत जिसे फरमाइश करने वाली थी शिकागो से आमला सिंह। चलते हैं कैसे गीत लेकर आ रहे हैं। उससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स की खबर आप तक लेकर आ रहे हैं।
1: शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com .au पर। For best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 04305258 96, दैट इज 04305258 96। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
0: तो हम चलते हैं दोस्तों एक ऐसी प्रिंसेस के लिए एक गीत हम पेश करने जा रहे हैं जो हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। सिडनी से आई अनिशा अख्तर। अनिशा बहुत प्यारी सी क्यूट सी है, शीज ओनली अ ब्यूटीफुल टीनेजर गर्ल। और अनिशा ने रिसेप्शन में, वेडिंग में बहुत प्यार से इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग्स भी गाए थे और अपना करियर भी शुरू कर रही है, हिंदी इवेंट्स में भी गाने भी गा रही है। अगर किसी को चाहिए अनिशा को तो मेक श्योर अनिशा के वहां पर फेसबुक पर जाइए, अनिशा अख्तर के नाम पर ढूंढिए या आप मुझे कॉल कीजिए, मैं उनका पता आपको दूंगी। अनिशा जो अपने क्रिया में अपना वेडिंग इंडियन वेडिंग इवेंट्स में गीते भी गा रही है। तो रिमेम्बर कीप इन माइंड अनिता अख्तर। तो आज अनिशा ने बहुत प्यारे से रिमिक्स गीत सुनना चाहती है। तो अनिशा आपके लिए अगला गीत

दोस्तों हमारा प्रोग्राम सुन रही है ब्यूटीफुल प्यारी सी अनिशा अख्तर जो सिडनी से यहाँ पर हमारे ब्रिस्बेन में शादी में आई है और रिसेप्शन में शादी में उन्होंने ऐसा भी गीते बहुत खूबसूरती से गाया था और अपनी शादी के इवेंट में भी बुकिंग्स भी ले रही है। अगर आपको चाहिए अनिशा को तो आप फेसबुक पर अनिशा अख्तर को फाइंड करिए उनका नाम को, नहीं तो आप मुझे कॉल कीजिए, मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट है, आप उन्हें ले सकते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी, आपकी अपनी पहचान। हम चलते हैं रेड बैंक की ओर, रेड बैंक से फरमाइश है हमारे पास गंगा और गीता की ओर से आप दोनों के लिए लेटेस्ट मिक्स पर सुनते हैं अगला गीत।

और हमारे साथ शामिल हो गए थे गंगा और गीता फ्रॉम रेड बैंक्स प्लेन्स. हम चलते हैं मेलबर्न की ओर दोस्तों. फरमाइश है हमारे पास मेलबर्न से एल्फ्रेड और किरण प्रसाद की ओर से आप दोनों के लिए भी लेटेस्ट बिट्स पर रिमिक्स पर.

और मेलबर्न में हमारा प्रोग्राम सुन रहे अल्फ्रेडो किरण प्रसाद, उन्होंने इस गीत में हमारे साथ शामिल हुआ। हम चल रहे हैं एक बार फिर सैक्रामेंटो यूएसए, विजेन और कामनी की पसंद पर, सुनते हैं अगला गाना।

0: बहुत प्यारा सा गजल फरमाइश आई थी हमारे पास सैक्रामेंटो यूएसए से, जहाँ मैं सुन रही विजयन और कामनी, आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वानी।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार आई एम सो वरीड, एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस लॉयर टू हैंडल माय केस।
1: मेरी एडवाइस है, गो फॉर द बेस्ट। अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance. Owned outright. Transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are. Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
0: हम चलते हैं दोस्तों कैलिफोर्निया यूएसए, और कैलिफोर्निया यूएसए से फरमाइश हमारे पास मैक्स प्रसाद की ओर से। मैक्स, आपके लिए अगला गीत।

बातचीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे मैक्स प्रसाद फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए। हम चलते हैं यहाँ पर केड्रोन पार्क की और जूनी और सविता की पसंद पर सुनते हैं अगला गीत। बहुत देर से अपना नाम सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलते हैं, अब आपकी बारी है, आप दोनों के लिए भी लेटेस्ट।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और इस गीत में हमारे साथ शामिल हो गए थे केडरन पार्क से जोनी और सविता। और दोस्तों हम चलते हैं ग्रीन एकर सिडनी की ओर। फरमाइश है हमारे पास ग्रीन एकर सिडनी से रजिन और मालती प्रसाद की ओर से। अजीब दास्ता एक अलग सा बीच पर। गीत के बाद हम लाएंगे आज के बर्थडे अनाउंसमेंट।

0: गीत को फरमाइश करने वाले थे रजीन मालती प्रसाद, जो हमें सुन रहे हैं ग्रीन एकर सिडनी में। एक्सक्यूज मी दोस्तों, इसी के साथ साथ हमारे स्टूडियोज में बस 7 मिनट हो गए हैं, 4:07 है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक आपके साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो विश्वाणी, आपकी अपनी पहचान।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
9: से। To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
11: Containers for Change के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड प्वाइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
0: वादे के मुताबिक दोस्तों लेकर आ रहे हैं हम आज के बर्थडे अनाउंसमेंट। जी हाँ, जो बर्थडे अनाउंसमेंट हमारे पास है बहुत दूर से आई है। हमारे आज रेडियो ब्रिसवानी के मेहमान हैं, लेकिन आज जो वेडिंग हुआ था यहाँ पर रशीदा के बेटे का, अनीस जैन का, वहाँ पर हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं रशीदा की चाची है। और साथ में बहुत से लोग जो आए हैं सिडनी से, न्यूजीलैंड से, कैनेडा, अमेरिका से, वहाँ पर उनकी जन्मदिन सेलिब्रेट करें अपने चाची। जैतू निशा जो सेक्रमेंटो यूएसए से आई है, आज अपनी 87th बर्थडे मना रही है। हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हम यही आपको कहना चाहते हैं कि जिंदगी में ये दिन आपके जिंदगी में बार बार बार बार बार बार आए, साल के दिन हो 50,000। इसी के साथ हम यही कहना चाहते हैं कि जिंदगी के रास्ते आपके हमेशा गुलजार रहे, चेहरे पर आपके हमेशा एक मुस्कान रहे, ना आए कभी गम का अंधेरा, आपका जन्मदिन सालों साल बेकरार रहे। खुदा करे तू सदा मुस्कुराए, हर दुख तुझसे दूर हो जाए। जन्मदिन पर यही दुआएं हमारी कि तेरा ये हर जन्मदिन खुशियां लेकर हमेशा आए और साथ साथ में पूरी हो आपकी हर ख्वाहिश और मिले खुशियों का जहां आपको। जब कभी आप मांगे आसमान से एक तारा तो खुदा आपको दे सारा आसमान। हैप्पी बर्थडे जैतून निशा, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। मैसेज हमारे पास आई है, बहुत से लोग हमारा प्रोग्राम ऑक्सली राइज में सुन रहे हैं जो वेडिंग्स पर आए। यास्मीन निशा फ्रॉम, उनकी बड़ी माँ है इन लोगों की, यास्मीन फ्रॉम सिडनी, नाजमीन फ्रॉम सिडनी, शेरिन फ्रॉम विशाद, अमीना फ्रॉम एडमेंटन कैनेडा, फिरोजा फ्रॉम कैनेडा, रोजेलिन फ्रॉम डेलिस सिटी यूएसए, और साथ साथ में रशीदा उनके परिवार जो लोग भी वहाँ यूएसए से आए हैं, कनाडा से और न्यूजीलैंड से, सभी ने सिडनी से आपको दुआएं भेज रहे हैं, मुबारकबादी भेज रहे हैं। जन्मदिन एक बार फिर आपको बहुत बहुत बहुत बधाई हो। खुशी की बात यह है कि आप आज ब्रिसबेन में अपनी 87 मना रही है। जन्मदिन की बहुत सारी सी बधाइयां राइट ऑफ ब्रिसबेन टीम की ओर से, कंग्रेचुलेशंस।

0: वंस अगेन जी आप दोस्तों, आज हमारे ब्रिस्बेन में हमारा आज प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत से लोग जो इंटरस्टेट से आए हैं, ओवरसीज से आए हैं, जहां पर आज ऑक्सली राइज में रशीद अली के घर पर सभी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। और जहां पर जैतू निशा सैक्रामेंटो से आई है, आज अपनी 87 बर्थडे मना रही है अपने सभी रिश्तेदारों के साथ, जिनमें है यास्मीन निशा फ्रॉम सिडनी, नाजमीन फ्रॉम सिडनी, साथ में शेरिन फ्रॉम विशार्ड, आमीना फ्रॉम एडमिंटन कनाडा, फिरोजा फ्रॉम कनाडा, रोजेलिन फ्रॉम डेली सिटी यूएसए, और साथ साथ में जितने लोग भी सिडनी से आए हैं, न्यूजीलैंड से आए हैं और यहां ब्रिस्बेन से भी, आपको बहुत सारे से आशीर्वाद भेज रहे हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, मैनी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलते हैं विशार्ड की ओर, फरमाइश है हमारे पास अल्पना की ओर से। हाँ अल्पना, चलते हैं आपकी फरमाइश पर, सुनते हैं अगला गीत।
1: यही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

ब्यूटीफुल सॉन्ग अल्पना, इस गीत को फरमाइश किया था अल्पना जो हमें सुन रही है 8 माइल्स प्राइस पे। और दोस्तों इसी के साथ साथ 22 मिनट हो गए हमारे स्टूडियोज में 4:07 है हमारा आपका ठीक 5 बजे तक है शाम का सफर रेडियो बिस्वानी आई हम आपके साथ सो। और चलते हैं लोटो काफी जी, एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं रोहितेश, जो रोहितेश कैलिफोर्निया से हॉलीडेज पर कैलिफोर्निया यूएसए से लोटो काफी जी में है और अपनी ब्यूटीफुल पिंकी के साथ वहां पर शायद टाइम स्पेंड कर रहे हैं और इस गीत को आज अपने दिल से पिंकी आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं। तो इस गीत को डेडिकेट किया है रोहितेश फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए जो लोटोका में है इस वक्त, पिंकी फ्रॉम बा। तो चलते हैं, क्या बात है रोहितेश, कैलिफोर्निया लौटने का इरादा है या नहीं कि बा में रहने का? चलते हैं आपके लिए, आपकी फरमाइश पर सुनते हैं अगला गीत।

0: beautiful song. इस गीत को फरमाइश करने वाले थे रोहित तेज फ्रॉम कैलिफोर्निया यूएसए, जो इस वक्त हमें लोटो कॉफी जी भी सुन रहे हैं। इस गीत को डेडिकेट किया था ब्यूटिफुल पिंकी के लिए जो हमें बाफी जी में सुन रही है।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
3: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
4: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
3: अरे वाह, इनका पता बताना।
4: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331. वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलां तों कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नूं असीं बिन कॉइन कहिंदे हां। अपने बिन कॉइन नूं बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नूं दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it Bincoin. Save, spend or donate your Bincoin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।

अदनान सामी का ब्यूटीफुल सॉन्ग जो मुझे कभी बहुत पसंद था, और जितना उन दिनों में 90s में मुझे गीत इतना पसंद था, आज भी मुझे गीत उतने ही पसंद है। जरा ढोल की बजाओ गोरियो, जब मैं ही सब 90s पर रेडियो पर थे, इस गीत को मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम पर कभी मिस ही नहीं किया, और आज भी मुझे गीत उतने ही पसंद है। तो चलते हैं विनम वेस्ट की ओर, मेनली वेस्ट, जहाँ मैं सुनी लक्ष्मी। लक्ष्मी चलते हैं आपके लिए, पेश है अगला गीत।

बास्केट में हमारे साथ शामिल हुए थे मेल्ली वेस्ट से लक्ष्मी। अब इसी के साथ साथ 4:45 बज चुके हैं दोस्तों हमारे स्टूडियोज के घड़ी में। आज साथ हमारा आपका इस सफर पर ठीक 5 बजे तक है।

चलते हैं दोस्तों, इस गीत में हम याद कर रहे हैं डॉक्टर अफरोज आजम को, उनके फैमिली को, जो फॉरेस्ट लेक में हमें सुन रहे हैं और हमेशा कहीं भी मिलते हैं, दे गिव मी द बेस्ट फीडबैक। थैंक यू सो मच डॉक्टर अफरोज आजम और उनके फैमिली के लिए ये गीत जा रही है।

और दोस्तों इसके साथ साथ बस हमारे स्टूडियोज में 5 ही बजने वाले हैं। चलते हैं आखिरी गीत पर, हम आ पहुंचे हैं। आखिरी गीत है आप सभी के लिए जो आज रेडियो ब्रिस्बेन सुन रहे हैं।

इसके साथ साथ हम आपसे यहीं पर इजाजत ले रहे हैं. हमारी आपकी मुलाकात है नेक्स्ट वीकेंड पर सैटरडे को 1 PM से शनिवार मस्ती म्यूजिक पर. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे बात आपके साथ हो जाएगी 5 o'clock से. शशि चौहान. Until next week, namaste, khuda hafiz, take care, love you all, goodbye.

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। यह सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, आप है मुसाफिर इस सफर में और सफर का नाम है एक रंगीन शाम आपके नाम, और ये रंगीन शाम हम एक साथ मिलकर इतना ही रंगीन बनाएंगे कि जब मैं यहाँ से निकलू ना तो बस मैं याद ही आती रहूं आपको। खैर, आप सभी को नमस्कार एंड उम्मीद है कि आज की जो ये दिन है बहुत ही बढ़िया जा रही है आपके लिए। एंड ऑफ कोर्स 5 o'clock हो गई, शाम हो गए होने वाली है एंड आप बस सभी तैयारी में लगे हुए होंगे, कुछ भोजन की तैयारी में तो कुछ कल के लिए कपड़े तैयार कर रहे होंगे। मगर यहाँ पर न्यूजीलैंड में तो शाम बहुत ही रंगीन है, और वो इसलिए क्योंकि हमारे लिए कल एक छुट्टी का दिन है। ठीक है, और आप सोच रहे होंगे कि भाई इन लोगों को कैसे छुट्टी मिल रही है, न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ ना, तो यहाँ पर किंग्स बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है एंड इट्स अ पब्लिक हॉलीडे। तो बस उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारा साथ दीजिए और 7 बजे तक हम कार्यक्रम को इसी तरह आगे बढ़ाते ही रहेंगे। तो याद करते हैं आज कार्यक्रम में सलमान खान को, अभी बहुत ही चर्चा में है वो, बताऊंगी किस लिए। उन्हीं के फिल्म से ली गई ये नगमा और फिल्म का नाम है सिकंदर।

हाँ जी, फिल्म सिकंदर का ये नगमा कार्यक्रम की शुरुआत ही में आपको कहती हूँ नमस्कार, कैम छो, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। और जहाँ भी आप सुन रहे हो कार्यक्रम को, विदेश में बहुत सारे लोग सुनते हैं, सभी को मैं यहाँ से कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये आप सोच रहे होंगे कि क्यों भाई सलमान खान के बारे में क्या मैं बोलने जा रही थी। तो देखिए, अभी हाल ही में सलमान खान ने एक पोस्ट में कहा है कि 60 साल का हो चुका हूँ, ठीक है, इतना उम्र का हो चुका हूँ लेकिन लड़ना नहीं भूला। ये याद रख लेना सभी, क्योंकि जेल में डालोगे हाँ, मगर फिर भी मैं वही सलमान खान हूँ। तो अभी हाल ही में मुंबई की हिंदुजा अस्पताल के बाहर मौजूद जो फोटोग्राफर्स थे उनको बहुत ही डांट लगाई उन्होंने। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि देखिए, अस्पताल में कोई ऐसा प्रेस वाला अगर हमको दिख जाए जो मेरे दर्द का मजा ले रहा हो, तो वही प्रेस जिसके लिए मैं हमेशा खड़ा रहा, जिनसे मैंने बातचीत की, जिनका मैंने ख्याल रखा और ये देखा कि वो भी अपनी रोजी रोटी कमा सके, अगर वो मेरे नुकसान से पैसा कमाना चाहते हैं तो चुप हो जाओ, एंजॉय मत करो। और हाँ जी, सो ये थे सलमान खान की ओर से मैसेज उन लोगों के लिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मीडिया बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बहुत कुछ कह जाते हैं जो सही भी नहीं होता है, चौकंदा होना चाहिए।

0: sometimes.
1: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा ये गीत एंड ऐश्वर्या राय पर फिल्माई गई. और एक्चुअली इस गीत, अगर आपने देखे होंगे ये स्क्रीन पर या फिल्म देखने गए होंगे, तो ऑब्वियसली आपने देखा कि ये इस फिल्म में अपने ससुर जी और अपने पतिदेव के साथ ये परफॉर्मेंस दी थी. तो ऐश्वर्या राय बच्चन तो आप सभी जानते हैं, 1994 में वो मिस वर्ल्ड बनी थी और बहुत सारी हिंदी फिल्मों में उन्होंने काम भी की है. उनके कुछ सफल फिल्में रही हैं जैसे हम दिल दे चुके सनम, उसके बाद देवदास, ताल, मोहब्बतें, धूम टू, जोधा अकबर, ए दिल मुश्किल, ऐसे बहुत सारे फिल्म उन्होंने दी है. और उन्हें एक्चुअली 2009 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा भी गया एंड बहुत सारे इनको ऐसे अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं. तो ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अपने जो अपनी छोटी सी दुनिया है उसमें बहुत ही सफल हुई है. मगर चलते हैं, अब बढ़ते हैं शाहरुख खान की ओर, तो उन्हीं की फिल्म से ये नगमा सुनते हैं. फिल्म रईस का गीत आपके लिए.

जी, शाहरुख खान तो बेशक बॉलीवुड के बेताज बादशाह कहलाते हैं, लेकिन उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाने में उन हीरोइनों का भी बहुत बड़ा योगदान है जिसने उनके साथ अलग अलग फिल्मों में स्क्रीन शेयर किए हैं। और कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं, मान लीजिए मनीषा कोइराला से लेकर शिल्पा शेट्टी, काजोल, जूही चावला, महिमा चौधरी, माधुरी दीक्षित, प्रीति जिंटा, सुष्मिता सेन, और तो बहुत, ऐश्वर्या राय, अनुष्का शर्मा, हाँ, कैटरीना कैफ, और दीपिका पादुकोण एक ऐसी एक्ट्रेस में शामिल है जिनके साथ शाहरुख खान ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी है, और सबके साथ उनकी पेयरिंग भी जबरदस्त रही है। वैसे तो खासतौर से काजोल और शाहरुख खान की जोड़ी तो एक दौर में सिने प्रेमियों की पसंदीदा जोड़ी ही हुआ करती थी, करेक्ट? हाँ, लेकिन जब बात दीपिका की आती है तो दोनों की कोई भी फ्लॉप फिल्में याद करना मुश्किल हो जाता है। दोनों ने एक साथ ओम शांति ओम, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, और अब शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म किंग में भी दीपिका पादुकोण नजर आएगी। खैर, ऐसे कई गीत है जो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, मगर आपको बता दूं कि आज पारिवारिक विषय में आज मैं बातें करूंगी एनवायरनमेंट डे पर, ठीक है? तो ये मैं लेकर आई हूं, और इनके साथ साथ हम झलक डालेंगे स्टॉकिंग पर। ये भी एक टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए, ये बहुत ही स्पेशल टॉपिक है जिसके बारे में भी थोड़ी देर में मैं और बताऊंगी आपको, मगर अभी तो चलो एक और गीत हम सुन लेते हैं। एंड इस बार जो गीत है इसे हमने फिल्म धुरंधर से

हाँ जी, ये फिल्म तो कुछ अलग ही फिल्म है। दुनिया भर में ये इस फिल्म की चर्चा हो रही है। बहुत पैसे कमा लिया इस फिल्म ने। एंड ऑफ कोर्स धुरंधर दो दो सीरीज हो, दो दो फिल्में निकल गई हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने इसे देखा भी है। एंड बहुत नाम कमा रही है ये फिल्म। मगर इसी बीच रणवीर सिंह जो लीड एक्टर है इस फिल्म में, इसमें रणवीर सिंह और डॉन 3 का विवाद शुरू हो चुकी है। ये मई 2026 में बॉलीवुड के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बन गया है, ठीक है, जिसमें अभिनेता के फिल्म से हटने के बाद फारा अख्तर ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बहुत कुछ सुनने को मिल रही है, मगर क्या सही है क्या नहीं। मगर बहुत रिपोर्टर्स के अनुसार रणवीर सिंह ने सुलह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन फारा अख्तर अभी भी तैयार नहीं है इस सुलह करने के लिए। और कहा गया है कि डॉन 3 के लिए रणवीर सिंह को कई वर्षों से बता दिया गया था, मगर बीच में कहा गया है कि फारा अख्तर ऋतिक रोशन जैसे कलाकारों से भी बात कर रहे थे। सो इसको लेकर कुछ इनमें अनबन सी हो गई है। और खबरों में है कि सलमान खान भी इस विवाद को सुलझाने के लिए फरहान और रणवीर के पास गए हुए थे। रणवीर के प्रवक्ता ने कहा है कि उन्होंने इस विवाद पर चुप्पी साधी है, और उन्होंने क्योंकि वो पेशेवर गरिमा बनाए रखना चाहते हैं, और क्यों नहीं। सो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। अगर अभी अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपका स्वागत मैं करती हूं। और इसके साथ एक और नगमा सुनते हैं। हाँ जी, बातें हो रही थी रणवीर सिंह के बारे में। तो वो बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं, बहुत ही एक्स्ट्रा पॉपुलर हो चुके हैं। और उनकी बीवी है ऑफ कोर्स आप जानते हो, दीपिका पादुकोण। अब वे दोनों माता पिता भी बन गए हैं, पेरेंट्स बन गए हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर एक रंगीन शाम आपके नाम। और हाँ जी, जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको, वो पल भी आएगा जिसका इंतजार है आपको। रब पर भरोसा करो और वक्त पे एतबार रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिंदगी हसीन है, जिंदगी से प्यार करो। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर एक रंगीन शाम आपके नाम। और हाँ जी, आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, ये एक बहुत ही विशेष टॉपिक है। और वो है, ये मैं बताना चाहती हूँ आपको, कि न्यूजीलैंड में स्टॉकिंग यानी पीछा करना और तंग करना अब एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक अपराध बन गया है। 26 मई यानी 26 मई से ये प्रभावी हो गया है यहाँ पे। खैर चलो, गीत सुनते हैं फिर और बातें। द ग्रेट गैम्बलर, अमिताभ बच्चन, जीना तमान एक साथ स्क्रीन शेयर किए उन्होंने।

0: mio, dov'hai sei tu? Ti sto cercando, dai soro mio.
1: Amore mio, dove sei tu? Ehi, kya ga rahi?
2: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
1: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
2: गा के

0: हाँ जी, बहुत ही बढ़िया सा ये फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, और उन्हीं उसी फिल्म से ली गई ये नगमा आपके लिए पेश कर रही थी. और ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन के नाम तो कई रिकॉर्ड्स हुए हैं, उनके बारे में तो बात ही करना बस कम ही होगा, जितना कहे उतना कम ही होगा ना, आप मानते हैं? हाँ जी. तो वैसे तो अमिताभ जी बहुत सारे फिल्मों में काम किए हैं, एंड सबसे बड़ी अचीवमेंट अभी और उनकी हुई है, कई सालों से वो बहुत ही बढ़िया शो कर रहे हैं, यानी कि जो एक अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मगर मैं फिर भी आपको बताऊंगी कुछ ही देर में. और बहुत ही कामयाब हुए हैं, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ उन्होंने काम भी किए हैं. और जो शो के बारे में बात कर रही हूँ वो है कौन बनेगा करोड़पति, और बहुत वर्षों से वो कर रहे हैं. वैसे तो इस बीच एक बीच शाहरुख खान ने भी उस शो को करने की कोशिश की, मगर नहीं कर पाए, क्योंकि ये सिर्फ अमिताभ जी पर ही जचता है और लोग इसे बेहद पसंद करते हैं. उनकी आवाज, उनकी जो बुलंद आवाज है, वो बस अलग ही है, बिल्कुल अलग ही है. एनीवे, और आगे हम बढ़ते हैं, और जैसे मैंने आपसे कहा कि स्टॉकिंग पर आज हम बात करेंगे, न्यूजीलैंड में अब ये एक क्रिमिनल ऑफेंस हो गई है, तो इसी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, और आपको बताऊंगी कि क्या शामिल है स्टॉकिंग के. जब स्टॉकिंग हम बोलते हैं तो उसके अंदर क्या क्या शामिल है, और इसके साथ साथ अगर आप स्टॉकिंग के शिकार हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये सभी बातें हैं. एंड ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलिया में भी ये कानून लागू है, और क्वींसलैंड में भी. अगर आप क्वींसलैंड में, ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं, तो याद रखिए क्वींसलैंड में स्टॉकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और यहाँ सेफ फील करना आपका हक है. यू हैव द राइट टू फील सेफ, ये किसी भी जगह पर. तो कुछ ही देर में हम इसे सुनेंगे, और अभी तो आप सुनिए ये बहुत ही पॉपुलर संगीत, मिशन कश्मीर से ली गई है, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा पर फिल्म आई गई.
1: देखिए मैं सूफिया प्रवेश को,
2: शाम रंग बुमरा आए हो किस बगिया से,
1: जैकेट निकालो.

0: अजी मिशन कश्मीर का ये नगमा। हाँ जी, कहते हैं ना कि अच्छे और बुरे वक्त सभी के जिंदगी में आती है। ऐसा तो है नहीं कोई जिसके जीवन में सभी हर बार सब अच्छे ही होते रहते हैं। कुछ ना कुछ तो जीवन में ऊंच नीच होती ही रहती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए आपको, चलो सुनते हैं।
1: कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए, थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। बहुत अच्छा हो तब भी ध्यान रखना है, आदत नहीं बनानी। बहुत बुरा हो तब भी ध्यान रखना है, ये सब खत्म हो जाएगा।
0: हाँ जी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं हर बार, दिन के बाद रात, ठीक है, खुशी के बाद गम भी ऐसे आते हैं कभी कभी जीवन में। तो बात यही होती है कि किस तरह से आप इसको हैंडल करते हैं, किस तरह से अपने अंदर इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का होता है। अगर बहुत स्ट्रेस लेंगे तो अपनी तबीयत जो है वो बिगड़ जाएगी। सो इसका ध्यान जरूर रखिएगा।

हाँ जी, जिस देश से भी हम आते हैं हमें हमारा देश रंगीला ही लगता है, और हाँ जी, जिस देश में हम आकर बसे हुए हैं उस देश पर भी ध्यान रखना है हमको। पर हाँ, जिस देश को हम छोड़ कर आए हैं उन्हें भूलना भी नहीं है, और उस देश के लिए भी सही हो यही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और जिस देश में हम बसे हुए हैं वहाँ का भी देखरेख हमें अच्छी तरह करनी चाहिए। अभी शायद आप सुने होंगे कि बहुत सारी बातें हो रही हैं ये सब लेकर कि लोग विदेश में आ जाते हैं, फिर अपने ही देश जैसा वही रंगत वो लोग चाहते हैं, एंड बदलाव नहीं करते हैं खुद में। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों हम खुद को उसी तरह ढाल कर रखना चाहते हैं जिस देश को हम छोड़ कर आए हैं? तो जहां पर हम रहते हैं जब वहां जाते हैं तो फिर अलग बात है, बट फिर भी यहां से हम जो कुछ सीख कर जाते हैं अपने पुराने देश में, जब वहां वापस लौट कर जाते हैं जो हमारी मातृभूमि होती है, तो वहां पर भी हमें सुधार करने में लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, ना कि वहां की जो हरकतें हैं लेकर अपने नए देश में आकर उसी तरह बिहेव करनी है हमें। अभी बहुत सारे लोग बात करते हैं लोगों के बारे में कि लोग क्या क्या करते हैं दूसरों के देश में आकर, ठीक है, वैसे तो हम यहाँ के नागरिक होते हैं, हमारे हक भी पूरे होते हैं, एंड हक हमें मिलता भी है, ये नहीं कि नहीं मिलती है, मगर देखिए हक जब हमें मिलती है तो उन्हें बरकरार रखनी चाहिए सही ढंग से। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें एकदम यही कहना चाहिए कि हमारा ये हक है तो हमें ये मिलनी ही चाहिए, ये वो करके अपने में सुधार लानी चाहिए। जिस देश में हम आकर बसे वहां कूड़ा करकट जो भी हो, ये एनवायरनमेंट जो है उसको संभाल कर हमें रखनी चाहिए। खैर, एनीवे, जब वो की ओर हम चलते हैं, अभी विश्व में देखा जाता है क्या क्या हो रहा है और उसकी वजह से हमें कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है। वो की वजह से पेट्रोल को लेकर लोग चिंतित होने लग रहे होने लगे हैं, मेरा बात ये कहना है, और विश्व भर में ये हो रहा है, ये सिर्फ हमारे देश में नहीं हो रही है, ये सभी तरह सभी जगह पर ये हो रही है। एंड कुछ लोग अननेसेसरी ड्राइविंग कम कर रहे हैं तो कुछ शेयर ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ रहे हैं। मुसीबत यहां तक आ गई है, न्यूजीलैंड की बात मैं कर रही हूँ, यहाँ न्यूजीलैंड में मुसीबत यहाँ तक आ गई है कि एक रूरल पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि एक ही रात में, हाँ जी, एक ही रात में 3 बार पेट्रोल चोरों ने उनके यहाँ से करीब $3,000 मूल्य का पेट्रोल चुरा लिया। तो देखिए यहां तक बात फैल गई है। और आधी रात को मनवातु इलाके में एलाइट पेट्रोलियम की एक फैमिली ओन्ड ब्रांच की गैरेज में एक लाल रंग की मेजडा कार पहुंची और फ्यूल को लेकर निकल पड़े। पुलिस इस पर छानबीन कर रही है। तो ये सब बातें हैं, एंड लोग इस हद तक जाने लगे हैं। तो उम्मीद है कि लोग इससे सीख सके और उल्टी सीधी हरकतें ना करें तो ही अच्छी होगी। चलते हैं 70s की ओर, एक रोमांटिक गीत किशोरदा की आवाज में, पर्दे पर ऋषि कपूर और मौसमी चटर्जी पर फिल्माई गई ये सॉन्ग।

0: हाँ जी,
1: कहाँ उड़ चले।
0: पुराने फिल्मी गीत अपनी जगह पर, नई गीत अपनी जगह पर। ये आप सुन रहे थे बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग, 17's की हिट फिल्म से ली गई और बहुत ही बढ़िया। एनीवे, मैं कहना चाहती थी आपसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी में बेटियों को छेड़ने वालों को माफी नहीं मिलती। अगर कोई बेटी को छेड़ता है तो उसका इंतजार यमराज कर रहे होते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। सीएम ने कहा है कि यूपी की पहचान गुंडे और माफिया की हो गई थी, यूपी में अब कोई बेटियों को छेड़ने की हिमाकत नहीं कर सकते हैं। तो सीएम जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज कोई व्यापारी से जबरन गुंडा टैक्स भी नहीं ले सकता। आज कोई नहीं कह सकता है कि 6 बजे तक बेटी घर

के अंदर दुबक जाए। अब तो उत्तर प्रदेश की बेटियां नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं। अगर कोई गुंडा बेटियों को छेड़ने का प्रयास करता है तो अगले चौराहे पर यमराज उनका टिकट काटने के लिए बैठे रहते हैं। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि कई देशों में देखा गया है, भारत में देखा भी गया है, बहुत बार देखी गई है कि ऐसी हरकतें होती हैं। ठीक है, तो इन हरकतों से बाज आ जाइए, वरना देश में बहुत भारी बदलाव आ रही है, ऐसा कहा गया है। ये थे एक समाचार आपके लिए, और सुनते हैं ये। और हाँ जी, ये बात हो रही है भारत की, तो सुनने में आ रहे हैं कि जुलाई महीने में भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी न्यूजीलैंड आ रहे हैं।

0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, सुनते रहिए। अगर अभी अभी आप हमारे साथ हो लिए हो तो तहे दिल से करती हूँ स्वागत आपका। एंड हाँ जी, मौसम तो बहुत ही बढ़िया है ब्रिस्बेन में। धूप निकली हुई है, 19 के बराबर, लगभग 19 डिग्री तक है, और बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं उम्मीद ही कर रही हूँ कि आप सभी बहुत ही मगन में होंगे। एंड एक्चुअली 1 जून से विंटर की शुरुआत हो रही है ना, तो कुछ कूलिंग वेदर आपको ज़रूर मिलेंगे। तो धीरे धीरे मौसम में बदलाव दिख रही है। सो उम्मीद है कि आप ये जो कूलिंग वेदर है, जो ठंडी वो मौसम है, उसका भी लुत्फ़ उठा सकेंगे। क्योंकि देखा जाए तो बार बार लोग यही कहते रहते हैं कि बहुत गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी। मगर गर्मी उतनी ज़्यादा, जो जहाँ पे उन लोगों से पूछिए जहाँ गर्मी कम होती है, उन्हें गर्मी ही चाहिए ना। और आपको तो ऑफ कोर्स गर्मी मिल रही है, और उसका भी प्रबंध है, एयर कंडीशनर वगैरह सब लगे रहते हैं ना। सो एन्जॉय यो मौसम, क्योंकि ठंड होती है तो कसके ठंड भी होती है ना।
0: एक रंगीन शाम आपके नाम, सुनते रहिए।
1: हाँ जी, सुनते ही रहिए। और अगला गीत जो आपके लिए लेकर आए हैं, ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया मौसम है आपका, तो मौसम का लुत्फ़ उठाइए एंड एन्जॉय कीजिए।

जी, आप सुन रहे थे 90s के ये हिट गीत, एक्चुअली साधना सरगम और उदित नारायण की आवाजों में, और पर्दे पर करिश्मा कपूर पर, खास तौर से फिल्म अनारी से ली गई। तो देखिए, हम बातें करने वाले थे स्टॉकिंग के बारे में, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये इसलिए क्योंकि अभी अभी हाल ही में न्यूजीलैंड में पीछा करना किसी का या उन्हें तंग करना अब एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी आपराधिक अपराध बन गया है। और अगर आप न्यूजीलैंड में हैं तो ये प्रोग्राम सुन रहे हो, तो या फिर आपके फैमिलीज या फ्रेंड्स हैं जो यहाँ न्यूजीलैंड में रहते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर बताइए। ऑस्ट्रेलिया में तो स्टॉकिंग जो है, ऑस्ट्रेलिया में भी इसके खिलाफ कानून है। खैर, एनीवे, पहले पहल तो मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि ये नया कानून है क्या। तो एक्चुअली इसे स्टॉकिंग एंड हैरेसमेंट क्राइम्स लेजिस्लेशन अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत 2025 के तहत स्टॉकिंग को अब सीधे क्राइम्स एक्ट 1961 के अंतर्गत एक अपराध माना गया है। हमने इस पर रिसर्च की है तो इसलिए आपको बतला रही हूं, और इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं इसके बारे में ना। तो वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है, मगर हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में नहीं समझते हैं। और ये जो ये तो है नया कानून, और इसकी सजा जो है वो है स्टॉकिंग के जो दोषी पाए जाने पर उन्हें 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। और इसकी परिभाषा यानी कि डेफिनेशन क्या है आप सोच रहे होंगे, तो इसमें ऐसी कई बार की जाने वाली हरकतें शामिल है जिसमें जिसे हम पैटर्न ऑफ बिहेवियर कह सकते हैं। जो एक ही हरकत कोई बंदा बार बार करता है तो ये इट बिकम्स लाइक अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, है ना, आप इसे कह सकते हैं। तो जो किसी व्यक्ति को, पहला तो ये है कि जो किसी व्यक्ति को डराती है या उन्हें मानसिक तनाव यानी फियर और डिस्ट्रेस देती है, ये 2 साल की अवधि में कम से कम 2 अलग अलग मौकों पर किया गया व्यवहार होना चाहिए, तो ही वो इसके स्टॉकिंग के इर्द गिर्द आती है। और क्या स्टॉकिंग में शामिल है आप सोच रहे होंगे, तो स्टॉकिंग में शामिल है जैसे किसी का पीछा करना, घर या ऑफिस के पास घूमना यानी कि किसी को फॉलो करना, ठीक है, और दूसरी है रिकॉर्डिंग करना या ट्रैक करना, या जैसे कि जीपीएस या अन्य तरीकों से आप उन्हें ट्रैक करते हो। फिर है बार बार अनचाहे संदेश या कॉल करना किसी को, किसी की संपत्ति या पालतू जानवरों को नुकसान पहुंचाना, और एक है डिजिटल स्टॉकिंग जैसे कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन उत्पीड़न यानी कि लोगों को तकलीफ पहुंचाना, जिसे हम साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं, और किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, किसी की रेपुटेशन डैमेज करना, किसी के बारे में जो भी अनसंड आप कहना चाहे कहते रहते हो, ये सब इसी के अंदर आती है। तो चौकंदा हो जाइए, याद रखिए किसी के बारे में झूठी अफवाहें ना फैलाएं वरना आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो बुरी तरह, ठीक है। और अगर आप स्टॉकिंग के शिकार हैं तो फिर क्या करें हम, तो क्या कर सकते हो आप, आपातकाल यानी इमरजेंसी हो तो अगर खतरा महसूस हो तो तुरंत यहाँ न्यूजीलैंड में आप 111 पर कॉल कर सकते हैं, ये न्यूजीलैंड के लिए है, ठीक है, और पुलिस को रिपोर्ट करें। आप स्थानीय पुलिस स्टेशन पर जा सकते हो या फिर उन्हें फोन कर सकते हो, यहाँ न्यूजीलैंड पर तो न्यूजीलैंड में 105 पर आप कॉल करके रिपोर्ट कर सकते हो। और तीसरी बात ये है कि आप सबूत इकट्ठा करें, मैसेज हो, कॉल लॉग्स हो, सीसीटीवी फुटेज हो, या गवाहों का जो विटनेसेस है उनको आप लेकर आ सकते हो। सहायता ले, विक्टिम सपोर्ट जैसी संस्थाओं में आप मदद ले सकते हो, या फिर कोई ऐसी मामला हो तो आप उन्हें वहां भी जाकर बता सकते हो। कानूनी सलाह आप ले सकते हो, ये एक कानून सुनिश्चित करता है कि स्टॉकिंग को केवल एक सिविल मामला नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध माना गया है, ठीक है। तो ये है चंद बातें न्यूजीलैंड के लिए, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की ओर बढ़ते हैं, तो हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में भी स्टॉकिंग
को पीछा करना या तंग करना, ये जो स्टॉकिंग कहते हैं, इसके खिलाफ सख्त कानून है। ये एक आपराधिक अपराध है। ऑस्ट्रेलिया में हर राज्य और क्षेत्र में अब अपने आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉज है जो जो स्टॉकिंग को परिभाषित करते हैं और सजा का प्रावधान करते हैं। ठीक है, क्वींसलैंड की ओर जाए तो जैसे हमने पहले आपको बताई थी कि क्वींसलैंड में स्टॉकिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है और यहाँ सेफ फील करना आपका हक है। यू हैव द राइट टू फील सेफ। शिकायत कैसे करें यदि आप या कोई परिचित स्टॉकिंग का शिकार है? तो आप स्थानीय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हो। ब्रिस्बेन में आप इमीडिएट डेंजर में हो तो आप तुरंत 000 पर कॉल कर सकते हो। और क्वींसलैंड में नॉन इमरजेंसी सपोर्ट और स्टॉकिंग रिलेटेड रिपोर्टिंग के लिए आप पुलिस असिस्टेंस यानी जो जब नॉन इमरजेंसी हो आप 131444 पर कॉल कर सकते हैं। 1800 रिस्पेक्ट यानी कि 1800737732 पर आप कॉल कर सकते हो। 24/7 कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट, काउंसलिंग और इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करेंगे ये लोग। और क्वींसलैंड में एक बार फिर कोई भी महिला क्वींसलैंड में डेंजर में है तो डीवी कनेक्ट वुमेन्स लाइन भी आप कॉल कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है ये, यदि मामला परिवार और रिश्तेदार से जुड़ा है तो परिवार हिंसा कानून यानी फैमिली वायलेंस लॉज के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये थे कुछ जानकारी आपके लिए स्टॉकिंग की इस टॉपिक पर, अवेयरनेस आपके लिए मैं लेने लाना चाहती थी। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे ऐसे इश्यूज हैं उनके साथ तो आप उन्हें बता सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। एनीवे चलते हैं, आपके लिए अब हम एक गजल लेकर आए हैं, इसे आप सुनिए। जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल है, उनकी एल्बम शहर से ली गई है।

हाँ जी, जगजीत जी की आवाज में आप ये गजल सुन रहे थे। एंड आज वो हमारे बीच नहीं है, मगर उनकी आवाज बस महक रही है हम सभी के बीच में। एनीवे, आज के जो अंग्रेजी शब्द मैं बताने वाली हूँ, जो हर हफ्ते बताती हूँ, तो आज का जो शब्द है वो है विंड, यानी कि WIND। तो आप ढूंढिए इनकी जो हिंदी वर्ड है, और क्लोज टू 7 o'clock मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास क्या है उनके आंसर। ठीक है, तो आप उसे जरूर ढूंढ कर रखिए। एनीवे, एंड कुछ ही देर में मैं पारिवारिक विषय में आपके लिए पेश करूंगी। आज एनवायरमेंट डे क्या है उसके बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगी, क्योंकि 31 मई तो आज है मुझे पता है, मगर देखिए ये जो एनवायरमेंट डे है ये जून में पड़ती है, 5 जून को, मगर मैंने सोचा कि इसके बारे में आज ही, क्योंकि मैं तो जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो 7 हो जाएगी। सो कुछ ही देर में उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगी। एंड बस चलते हैं अब चलते हैं पुराने गीतों की दुनिया में, पुराने यादों को ताजा करते हैं। सदाबहार फिल्मी गीत आपके लिए लेकर हम आते हैं। तो आज पुराने गानों में हम कुछ ऐसे नगमे लेकर आए हैं जो शायद आप सुने भी होंगे, मगर बहुत जल्द नहीं सुने हैं, मगर हाल ही में नहीं सुने होंगे। और हाँ जी, मैं जबकि ये बता रही हूँ आपको, तो आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हर रविवार को बहुत ही हरा भरा कार्यक्रम रेडियो ब्रिजवानी पर आप सुनते होंगे। बहुत ही हमारे जो अनाउंसर्स होते हैं वो बहुत ही बढ़िया नगमे लेकर आते हैं आप सभी के लिए। नगमों का एक भंडार होता है और बातें भी बहुत सारे होते हैं जो आपके लिए, आपके हित के लिए होते हैं। तो ऐसे में एक हमारे अनाउंसर है जो बहुत बरसों से रेडियो ब्रिजवानी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में मैं बताऊंगी। पहले आप ये गीत सुनिए और मैं बताऊंगी किस अनाउंसर के बारे में मैं बात कर रही हूँ।

हाँ जी, धर्मेंद्र पर फिल्माई गई ये बहुत ही बढ़िया सा नगमा, एक्चुअली मुमताज के साथ वो इस फिल्म में दिखे थे, एंड उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। खैर, मैं आपको बताने जा रही थी कि देखिए, हमारे रेडियो ब्रिजवानी 1701 पर कई ऐसे हमारे अनाउंसर्स हैं जो अपने टाइम को निकाल कर आपके लिए बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम्स लेकर आते हैं, एंड उनमें से एक खास अनाउंसर है जो बहुत बरसों से रेडियो ब्रिजवानी के साथ जुड़े हुए हैं, एंड मैं बात कर रही हूँ फिरोज़ खान जी की। और फिरोज़ खान जी बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम लेकर आते हैं, एक्चुअली रविवार को यादों का सफ़र जो 10 बजे से 11:30 बजे तक, और वो लाते हैं आपके लिए चुने हुए नगमे, हिट्स ऑफ 40s, 50s और 60s। तो ज़रूर आप उन्हें सुनिए, क्योंकि आप जब सुनेंगे उन्हें आपका जी खुश हो जाएगा। और जैसे हमने पहले कहा कि हमारे जितने भी अनाउंसर्स होते हैं प्रोग्राम लेकर आते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है आपकी जो रविवार का दिन है, बहुत ही बढ़िया जाती है। एंड उसके साथ साथ 24/7 आप रेडियो ब्रिजवानी 1701 सुन सकते हैं, और अभी आप सुन रहे हैं एक रंगीन शाम आपके नाम शशि जोखन के साथ। ठीक है, हाँ जी, तो ऐसे तो कई गाने हैं हमारे पास आपके लिए बजाने के लिए, मगर देखिए अभी तो मैं आपसे बातें करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ, आपको अवेयर करना चाहती हूँ कि वो यूनाइटेड नेशन द्वारा जो हर बार वो एक खास दिन चुनते हैं किसी खास वजह से, तो आज ये 5 जून को एक्चुअली इट्स वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो इसे विश्व पर्यावरण दिवस भी कहते हैं, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता फैलाना होता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1973 से मनाया जा रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग, पोल्यूशन और जंगल के जानवरों की रक्षा करने वाली ऐसे मुद्दों पर कार्य करने के लिए मंच प्रदान करता है। तो इस दिन का मुख्य उद्देश्य क्या है आप सोच रहे होंगे, खास तौर से नेचर की सुरक्षा पहली होती है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम नेचर की सुरक्षा करें, क्योंकि देखिए जो पेड़ पौधे हमारे आगे पीछे हम बोते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, एंड हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं अपने अंदर से, तो वो उसे ग्रहण करते हैं। तो ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, सो नेचर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, फ्रेश एयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस यूनिवर्स के लिए, और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये इनकी खास वजह है इस दिन को चुनने के लिए खास तौर से। और 2026 की जो थीम है, हर साल इनकी थीम बदलती ही रहती है, 2026 की जो थीम है मेन फोकस, वो जलवायु कार्रवाई यानी कि क्लाइमेट एक्शन पर केंद्रित है, और 2025 की जो थीम थी वो प्लास्टिक प्रदूषण का को समाप्त करना, यानी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, इस पर केंद्रित था। और इतिहास इसकी शुरुआत 1972 में यूनाइटेड नेशन महासभा द्वारा की गई थी, और पहला आयोजन 5 जून 1973 को केवल एक पृथ्वी यानी ओनली वन अर्थ थीम के साथ हुआ था। तो ये दिन समुदायों, व्यवसायों और सरकारों को एक साथ लाकर स्थायी जीवन शैली यानी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस दिन स्कूलों और अन्य कमिटीज, संस्थाएं द्वारा एक साथ होकर पेंटिंग और जागरूकता जो रैलीज होते हैं वो करते हैं, ये सभी की आयोजित की जाती है, और हमें याद दिलाता है कि क्लीन एयर, हेल्थी एनवायरनमेंट के बिना जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो ये एक्टिवली रिस्टोर करती है इकोसिस्टम, ये जो थीम हमारी है जलवायु कार्रवाई यानी एक्शन, क्लाइमेट एक्शन, तो इसमें आप कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए, प्लांट ट्रीज,
सबसे सरल और प्रभावी तरीका है पेड़ लगाना। अपने घर के आसपास, सोसाइटी में या वर्क प्लेस पर आप पौधे लगाएं, प्लांट नेटिव ट्रीज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे प्लांट कीजिए। और साथ में देखिए, सपोर्ट लैंड रिस्टोरेशन, एंगेज इन कम्युनिटी गार्डन, वर्किंग बीज, बहुत लोग करते भी हैं, जतीश जी तो करते ही हैं मुझे पता है, और वेटलैंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट करना चाहिए, बीच और रिवर क्लीनअप्स, ये सभी प्लास्टिक वगैरह वहां से निकालते हैं और रिस्टोर करती है ना, हैबिटेट रिस्टोर करती है। और सपोर्ट लोकल बायोडाइवर्सिटी, प्लांट फ्लावर्स टू सपोर्ट बी पॉपुलेशन, और प्रोटेक्ट कीजिए नेटिव वाइल्ड लाइफ हैबिटेंट्स, ठीक है। और कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं कार्बन फुटप्रिंट, तो आप कैसे इसमें भाग ले सकते हैं, तो स्विच ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट पे जाइए, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जगह आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कीजिए, साइकिल कीजिए या फिर पैदल चलने का अपनाइए, और कंजर्व एनर्जी एट होम, ऊर्जा की बचत कीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सेव इलेक्ट्रिसिटी, अनावश्यक बिजली उपकरण बंद करें, सोलर लगाइए, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हो। मगर याद रखिए, आप अगर घर पर है तो बेफिजूल की जो बत्तियां, कभी कभी देखा जाए लोग घर भर में बत्ती जला देते हैं, तो इससे आप दूर रहिए, एंड कोशिश कीजिए कि आप बत्ती ना जलाएं, एक ही जगह पर बैठे हैं तो वहीं पर बत्ती आप जला सकते हो, बहुत ज्यादा जलाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। और इसके साथ साथ आप जल संरक्षण यानी कि पानी की बचत कीजिए, पानी बर्बाद ना करें, बारिश के पानी को आप बटोर कर रखिए, उसके भी उपयोग आप कर सकते हो, उससे गार्डन वाटर कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो ऐसे बहुत कुछ है कहने के लिए, और मगर आप अपने जो किचन में वेस्ट होते हैं उसे कंपोस्ट बनाइए, अपने गार्डन में छोड़िए, और प्लास्टिक को ना कहे, say no to plastic, ठीक है। प्लास्टिक बहुत ही, जैसे प्लास्टिक बॉटल्स होते हैं, सिंगल प्लास्टिक होते हैं, हम इसे बहुत बार यूज करते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं, ये पानी में जाते हैं, फिर वहां पर डैमेज करती हैं, जो जीव वगैरह वहां होते हैं उनको हानि पहुंचाते हैं, और बहुत तरह से हम इसे अगर हम कम कर सकते हैं तो अच्छा है। कई देशों में ये एक्टिवली प्रैक्टिस की जा रही है, न्यूजीलैंड में तो किया जा रहा है, प्लास्टिक जो सुपरमार्केट्स में हमें देते थे वो सब बंद हो गई है, एंड सो यही सब है जो आप कर सकते हो। ये आप इसी तरह से आप मदद कर सकते हो, और हमारे जो प्लेनेट है इसको आप सेव कर सकते हो। अभी मैं एक गीत लेकर आऊंगी आपके लिए, मगर अभी तो आप ये नगमा सुनिए, क्लाइमेट पर एक गीत मैं ढूंढ कर लाई थी आपके लिए, तो आप अभी तो इसे सुनिए, फिर बाद में।

0: जी, दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माई गई ये गीत मुकेश जी की आवाज में, ये फिल्मी गाना आप सुन रहे थे, फिल्म याहूदी से ली गई। तो चलो, अब ये सॉन्ग जो मैं लेकर आई हूँ, जो ओनली वन अर्थ एनवायरमेंट की जो गीत है, इसे आप सुनिए।
1: हैप्पी वर्ल्ड।

0: जी, ओनली वन वर्ल्ड, और अगर हम नहीं इसे संभालेंगे तो हमारे बच्चों पर क्या हाल होगा, ये तो क्या सितम होगा उनके साथ, हमें पता नहीं हो. सो एनीवे, देखिए, इस एंथम को कंपोज किया था शान ने, एंड इसमें कई इन्फ्लुएंसर्स और सिंगर्स ने भाग लिया था, जैसे सचिन तेंदुलकर, शंकर महादेवन और कपिल शर्मा, शिल्पा शेट्टी, तुलसी कुमार, भूमि त्रिवेदी, ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर इसको दुनिया के लिए पेश किया था. सो देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं और कई ऐसे बातें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मगर देखा जाए तो कभी कभी इट बिकम्स नॉट इनफ टाइम हमारे पास, है ना. सो चलो, हम आपके लिए अपना एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ठीक है.
1: सुबह से शाम तक.
2: When I will dance, my dance shall speak for me.
1: शाम से रात्रि तक.
3: Superb, superb, fabulous, outstanding.
4: नहीं, ऐसे नहीं, खुल के बोलिए, कैसा लगा? लगा कैसा?
1: और फिर उसके बाद आपका साथ देता रेडियो ब्रिजवानी, आपकी पहचान.
3: हिल मत चल.
4: अरे बगैर हिल चिल कैसे होगा?
3: Yeah.
4: Yeah.
3: Yeah.
0: हाँ जी, मिलजुल कर एक साथ हम रेडियो विजवानी को आगे बढ़ाएंगे और आपके बिजनेस को भी आगे बढ़ाते.
5: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
5: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
6: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365. और ईमेल princejewelers@bigpond.com. फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट.
0: हाँ जी, कॉन्टेक्ट कीजिए. किसको पता है आपको ना, एंजेला पूरन को आप कांटेक्ट कीजिए, वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाएगी.
7: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर. ब्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स. घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी. आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे. ब्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स. तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा. रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर. आज ही कॉल करें 0430-525-896. दैट इज 0430-525-896. हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au.
0: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिजवानी पर एक रंगीन शाम आपके नाम.
8: Sending a digital top-up to loved ones in Fiji is super easy. Keval apne nearest dairy, supermarket or petrol station pahunchiye aur kharidiye 10, 20, 30 ya $50 top-up. Aap website www.digicelinternational.com visit bhi kar sakte hain. Digicel top-up apne family ko Fiji dene ke liye. Paisa bhejne ke liye our partner Click Express Pick is the easiest way to send money to Digicel Fiji. Keval aap को रजिस्टर होना है एट www.clickexpresspic.com पर. डिजिसेल, वी आर बेटर टुगेदर.
0: हाँ जी, रेडियो ब्रिजवानी पर एक रंगीन शाम आपके नाम. हम आते हैं आपके लिए हर रविवार को 5 बजे से 7 बजे तक, और आपके लिए लेकर आते हैं नए पुराने गीतों का संगम. और इसके साथ साथ हम लाते हैं आपके लिए पारिवारिक विषय, कुछ ऐसी ऐसी बातें आपकी अवेयरनेस के लिए और जो आपके काम आ सके. इसके साथ साथ हम लेकर आपके लिए आते हैं छोटी छोटी बातें, अपनों की सेगमेंट.
5: प्रिया, मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेजूं, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
9: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
9: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना

7 बजने ही वाले हैं। जो अंग्रेजी शब्द हम आपके लिए लेकर आए थे, कहना चाहती हूँ आपसे कि द वर्ड वॉज विंड, और हिंदी में उसे हवा कहते हैं, आप उसे पवन भी कह सकते हैं, वायु भी कह सकते हैं, और इनको आप कई तरह से सेंटेंस में यूज भी कर सकते हैं। मगर अभी तो हम अब रुखसत ले रहे हैं यहाँ से, और आपके लिए ये जो आखिरी गीत है इसे छोड़े जा रही हूँ, और आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में जो भी आपकी ओर आए, आप उसे उसे सहन कीजिए। दिन आती है दिन के बाद रात, रात के बाद फिर दिन आती है, सुबह आती है। इसी तरह आपके जीवन में जो भी आ रही है वो टल जाएंगे। साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया। एंड अगले सप्ताह एक बार फिर आपसे मुलाकात होंगी, तब तक के लिए खुश रहिए, औरों को खुश रहने का मौका जरूर दीजिए। शशि जोखन की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए।

नमस्कार। वीकेंड्स गुजर रहे हैं जबरदस्त मजेदार, और सोचा गया कि क्यों ना अपने इन वीकेंड्स को खास बना दिया जाए अपने ही रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स के साथ। फेवरेट सॉन्ग को रेडियो ब्रसवानी पर सुनने का मजा ही अलग है, और आपने हम तक रिक्वेस्ट पहुंचाई है तो हम उसे प्ले ना करें ये हो कैसे सकता था। इसीलिए आज एक बार फिर से फरमाइशी गीत लेकर आपकी सदाक्षी आ गई है रेडियो ब्रसवानी पर, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जी हाँ, सिर्फ आपके लिए, इसलिए क्योंकि बहुत सारे गाने बढ़िया बढ़िया से आपने रिक्वेस्ट किए हैं। मेरे पास आज जो लिस्ट है वो लाजवाब है, मतलब ये सभी गाने सुनकर मुझे भी बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करें हमारे रेडियो प्रसवानी पर फरमाइशी गीतों के सफर की। जी हाँ दोस्तों, आज एक बार फिर से सताक्षी है आपके साथ, और मेरे साथ कई ऐसे लाजवाब से ट्रैक्स हैं जो मैं आज आपको नजर करने जा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन्हें जरूर सुनेंगे। सो चलिए, अगर अभी तक आपने हमें रिक्वेस्ट नहीं किए हैं अपने गाने तो लिख भेजिए रेडियो प्रसवानी के फेसबुक पेज या फिर वेबसाइट पर। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं इस अगले ट्रैक के साथ, और इसके उस पार होगी उस मेल पर बात जो है आज की पहली फरमाइशी गीतों की मेल। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी को।

की पहली रिक्वेस्ट मुझे की है मेलबर्न से प्रिया ने। प्रिया कहती हैं, हाय सताक्षी, रेडियो प्रेसवानी को बहुत टाइम से सुन रही हूँ और बेसिकली मैं मेलबर्न में स्टडीज के लिए हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब फरमाइशी गीत सुनती हूँ। आज भी ऐसा लगता है कि आप लोग इसको जिंदा कर देते हैं। ये वो शोज थे जो पहले आया करते थे जब सॉन्ग रिक्वेस्ट लोग चिट्ठियों के ज़रिए करते थे और आप इस मेल रिक्वेस्ट को भी इतना ख़ास बना देती हैं कि अपनी रिक्वेस्ट किए बिना रहा ही नहीं जाता है। आज मैं भी रेडियो प्रस्थानी पर पहली बार अपनी रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ और ये गाना जो है ये मैं उसको डेडिकेट करना चाहती हूँ जिसने मुझे हाल ही में प्रपोज़ किया है। बेसिकली ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये साथ जो है मेरा उसके साथ बना रहे और प्रपोजल मुझे भी एक्सेप्ट है और हम दोनों के लिए एक गाना बहुत ही खास है जिसे आज मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ज़रा हटके ज़रा बचके से तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, ये गाना ज़रूर प्ले कीजिए। ये गाना इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसी गाने को गाकर उसने मुझे प्रपोज किया था। बहुत खूबसूरत प्रिया आपने बात कही सबसे पहले तो हमारे लिए कि आपको रेडियो प्रस्थानी सुनना अच्छा लग रहा है और हमारा ये सफ़र फरमाइशी गीत आपको बहुत मज़ा देता है, अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो हमारी तारीफ़ों के लिए शुक्रिया। उसके बाद बहुत खूबसूरती से आपने अपने मोहब्बत को भी हमसे शेयर किया, बांटा, लेकिन भाई उनका नाम भी शेयर कर दीजिए ताकि हम उनके नाम को भी अनाउंस कर सकें। हालांकि इश्क में नाम लेकर उसे बदनाम नहीं करते, लेकिन ये लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के नाम लिए जा सकते हैं। आप सुनना चाहती हैं ज़रा हटके ज़रा बचके से तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। मतलब ये गाना सच में, मैं उनमें से हूँ जिनको नए गाने बहुत पसंद नहीं है, बट इस तरह के गाने जब आते हैं ना तो आप खो जाते हैं उनमें। तो अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये गाना है, सचिन जिगर का म्यूज़िक है, अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं, सारा अली खान और की कौशल स्क्रीन पर हैं और हम इमेजिन कर रहे हैं इस वक्त आपको और आपके उनको जिन्होंने आपको ये गाना गाकर प्रपोज किया है। तो ज़रूर इन्जॉय कीजिए और गॉड ब्लेस यू, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। थैंक यू सो मच हमें लिखने के लिए।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सी के बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: रेडियो प्रसारणी पर ये है फरमाइशी गीत। ये वो गाने हैं जो आपने हमें रिक्वेस्ट किए हैं। वैसे अगर नहीं किए हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है हमें रिक्वेस्ट करना, बस हमें रेडियो प्रसारणी के फेसबुक पेज या वेबसाइट पर लिख भेजिए कि कौन से गाने हैं जो आप सुनना चाहते हैं, आपको पसंद है, हम डेफिनेटली उन गानों को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं एक और ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसारणी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत सताक्षी के साथ।

चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी है। और ये है पुणे से, और पुणे से हमें लिखा है संगीता सिंह ने। संगीता कहती हैं, हाय सताक्षी, रेडियो प्रस्वानी सुनती रहती हूँ और अपने कामों को करते हुए जब इसे सुनती हूँ तो वक्त कैसे गुजर जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता है। फरमाइशी गीत एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पर अपने गाने रिक्वेस्ट करते हैं और प्ले भी किए जाते हैं। आज मेरा भी एक गाना मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हम दिल दे चुके सनम से। और ये बात जो है ये मैं इस गाने के थ्रू अपने पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ, बिकॉज वो मेरी शादी के लिए मुझे फोर्स कर रहे हो और मैं उनको बोल चुकी हूँ कि आई एम इन लव विथ समवन, तो मुझे उसी से शादी करनी है फिर चाहे कुछ भी हो जाए। प्रिया, बहुत खूबसूरत बात मुझे आपकी ये लगी सबसे पहले तो, कि आप अपने पेरेंट्स को बता रही हैं कि आप प्यार करती हैं किसी से, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लेकिन आप उनके खिलाफ भी नहीं जा रही हैं। होता है ना आजकल के बच्चे कि भाग गए घर से या फिर कोई ऐसा कदम उठा लिया जो पेरेंट्स को पसंद नहीं आता है, तो अपनी आवाज़ उठा करके आप अपने प्यार का इजहार कर रही हैं और उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। हम दिल दे चुके सनम, ये टाइटल ट्रैक है ऐसी फिल्म का जिसे आप सुनना चाहती हैं, और इस्माइल दरबार का म्यूजिक है। महबूब ने इस गाने को लिखा है, कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद सलामत ने इसे अपनी आवाज़ से सजाया है। तो इंजॉय कीजिए इस ट्रैक को हमारे साथ। हम विश करते हैं कि आपके पेरेंट्स राजी हों और ये रिश्ता मुकम्मल हो। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। ये ट्रैक आपके लिए।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: रेडियो प्रस्थानी पर आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत। आपकी सदाक्षी आज एक बार फिर से फरमाइशी गीतों के सफर में आपके साथ है और हम आपके रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स इस वक्त प्ले कर रहे हैं आपके लिए। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी फरमाइशों को हम तक पहुंचा सकते हैं, अपने दिल के जज्बात हमारे साथ बांट सकते हैं। हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप हमें बता सकते हैं हमारे रेडियो प्रस्थानी के फेसबुक पेज और वेबसाइट पर। तो लिखते रहिए हमें और सुनते रहिए रेडियो प्रस्थानी, सदाक्षी आपके साथ।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: अगला मैसेज मुझे मिला है इस वक्त, ये ब्रिस्बेन से है और ये है राहुल जैन का। राहुल कहते हैं, हेलो सताक्षी, और मैं यहाँ पर ब्रिस्बेन में पोस्टेड हूँ। मेरी ज्वाइनिंग हाल ही में हुई है और सभी लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बड़ा मज़ा आता है जब यहाँ पर एक फैमिली जैसा माहौल बन जाता है। फरमाइशी गीत मैंने लास्ट वीक सुना था और आज मैं आपसे और जो भी यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, उन सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरी अरेंज मैरिज फिक्स हुई है और ये पहली मुलाकात जो थी ये समहाउ बड़ी ही खूबसूरत थी। पहले मैं बहुत डरा हुआ था कि आज के टाइम पे जब मैं अच्छी जॉब में हूँ, मैं लव मैरिज करने की जगह अरेंज मैरिज करूँगा, लेकिन मुझे मेरी फियांसे से ही मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया। और वो बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत जल्दी हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता बना है जो मोहब्बत वाले रिश्ते से अगर मैं लव मैरिज करता तो उससे कम नहीं है। आज मैं उन्हें एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ और मैंने उनको भी बोला है कि वो ये ज़रूर सुने, क्योंकि इसी गाने के ज़रिए मैं अपने जज्बात शेयर करना चाहता हूँ उनके साथ। मैं सुनना चाहता हूँ फिर विवाह से मुझे हक है, क्योंकि मेरी कहानी सम हाउ विवाह टाइप की है। तो प्लीज़ ये गाना मेरे लिए ज़रूर प्ले कीजिए। राहुल, हम ज़रूर प्ले करेंगे। और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आपकी मैरिज फिक्स हुई है, फियांसे हैं आपकी, आपकी इंगेजमेंट हो चुकी है। और बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, मुझे तो लगता है कोर्टशिप से लेकर शादी तक का जो सफ़र है बड़ा ही खूबसूरत होता है, खासकर तब जब आप अरेंज मैरिज करते हैं। एक दूसरे को समझने का, जानने का बहुत अच्छा वक्त मिलता है। और विवाह का गाना जो आपने पसंद किया है वो तो आपके दिल के जज्बात बयां कर ही रहा है। बिल्कुल आपको हक है उन पर, और ये गाना आपके लिए और आपकी फियांसे को भी हम बहुत बधाई देना चाहते हैं। एक बहुत अच्छे इंसान के साथ वो अपनी ज़िंदगी शुरू करने जा रही हैं। तो चलिए आप दोनों के नाम ये ट्रैक इसे सुनिए और सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो ब्रिस्बेन। आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीत।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: साक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एएम पर फरमाइशी गीतों में हम प्ले कर रहे हैं आपकी फेवरेट सॉन्ग रिक्वेस्ट को इस वक्त। जी हाँ, वो गाने जो आपने रिक्वेस्ट किए हैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमारी, और आपके वीकेंड को खास बनाने की शिद्दत से ये जो कोशिश है ये जारी रहेगी आगे के एपिसोड्स में भी। लेकिन फिलहाल एक अगले ट्रैक के साथ आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि अगली फरमाइश किसकी है। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी, बने रहिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए फरमाइशी।

फरमाइशी गीतों में मेरे पास जो अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट है नंदिता जैन की, और आपने मुझे लिखा है, आपने कहाँ से लिखा है नंदिता, ये भी प्लीज अगली मेल में मुझे जरूर मेंशन कीजिएगा। आप लिखती हैं कि ये मेरी पहली मेल है, और रेडियो प्रस्वानी पर यूं तो सभी शोज बहुत अच्छे हैं, लेकिन फरमाइशी गीत मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि डिफरेंट सॉन्ग्स और डिफरेंट म्यूजिक जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और दूर दूर से लोग लिखते हैं, तो हर स्टेट के हर देश के लोग भी इस शो से जुड़े जरूर मेंशन कीजिएगा। आप लिखती हैं कि ये मेरी पहली मेल है, और रेडियो प्रस्वानी पर यूं तो सभी शोज बहुत अच्छे हैं, लेकिन फरमाइशी गीत मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि डिफरेंट सॉन्ग्स और डिफरेंट म्यूजिक जो है वो इस प्रोग्राम का हिस्सा है, और दूर दूर से लोग लिखते हैं, तो हर स्टेट के हर देश के लोग भी इस शो से जुड़ते हैं। ये पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट शो है। मेरी

गीतों को इतना अप्रिशिएट करने के लिए, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत देने के लिए। और आपकी जो रिक्वेस्ट है फरमाइशी गीतों में आज अखियों के झरोखों से जरूर हम आपके लिए प्ले करेंगे। आपने इतनी प्यारी रिक्वेस्ट की, ये गाना हम, मुझे लगता है हम सबका ही बहुत ही फेवरेट है, बहुत ही खूबसूरत गाना है हेमलता की आवाज में, जिसे लिखा है और म्यूजिक दिया है रविंद्र जैन साहब ने, और स्क्रीन पर सचिन पिलगांवकर और रंजिता कौर। आइए अखियों के झरोखों से का टाइटल ट्रैक सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रेस वाणी, सुनते रहिए फरमाइशी गीत।

नमस्कार, आदाब। ढलती हुई शाम कुछ ख्याल ले आती है और बस उन्हीं ख्यालात के साथ रात गुजरती है। सामीन, जब भी आपका ख्याल आता है, मेरा दिल यही कहता है कि वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, वो इत्र की शीशी बेवजह इतराती है खुद पर, हम तो तुम्हारे ख्यालों से ही महक जाते हैं। आपसे मुलाकात का समय तय है और हाजिर है गजलों का कारवां लेकर आपका रेडियो हम सफर। निलय प्रोग्राम है कारवां गजल और आपने ट्यून इन किया है रेडियो ब्रिस्वानी। साज तैयार हैं, सुर सजे हुए हैं, तो आगाज करते हैं महफिल का। अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अदा देखो नकाबे चश्म वो कैसे उठाते हैं, अभी तो पी नहीं फिर भी कदम क्यों डगमगाते हैं, जरा अंदाज तो देखो न है तलवार हाथों में, हमारा दिल ज़बह कर खून से मेहंदी रचाते हैं। हमें मंजूर है गर गैर से भी प्यार हो जाए, कम अज कम सीख जाएंगे कि दिल कैसे लगाते हैं। सुना है आज वो हमसे खफा हैं, बेरुखी भी है, नजर से नजर हर बार क्यों हमसे मिलाते हैं।

कुछ यूं लगता है तेरे साथ ही गुजारा वो भी, हमने जो वक्त तेरे साथ गुजारा ही नहीं। जब ये अशआर पढ़ते हैं तो इन्हीं के साथ गालिब का अंदाज भी याद आ जाता है कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। कहने को बात एक सी होती है, अंदाज बदल जाते हैं। मुझे लगता है जिंदगी हर किसी को दिल की मोहब्बत से नवाजती है, आपको भी नवाजा होगा। मोहब्बत ख्यालों को खूबसूरत बनाती है, आपको है कि नहीं? वो नजर देती है जिससे वादियां खूबसूरत लगने लगती हैं। हर वो बात जो दिलबर से जुड़ी हो वो दिलकश लगने लगती है। निलय के साथ हैं आप कारवाएं गजल की शमाए रोशनी से, दिल आबाद रखिएगा और सुनते रहेगा कारवाएं गजल। अजब हाल अपना होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके होती कभी दिल निसार होता। न मजा है दुश्मनी में न लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, ये मजा था दिल लगी का कि बराबर आग लगती, न तुम्हें करार होता न हमें करार होता। तेरे वादे पे सितमगर अभी और सब्र करते, अगर अपनी जिंदगी का हमें एतबार होता।

नमस्कार आदाब, एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ आपकी खिदमत में। मैं हूँ आपका रेडियो हम सफर, निलय है मेरा नाम। दिल की बात को जाहिर करना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर लोगों में बड़ी कश्मकश होती है। दिल की बात कही नहीं जाती एक अजीब से डर की वजह से कि कहीं दिल की मोहब्बत को कोई ठुकरा ना दे, ना कह दे। पर हुजूर, इतना आसान नहीं होता अपनी मोहब्बत को किसी और के साथ देखना, है ना। दूर भले वो हो जाए लेकिन दिल से उसे निकाल पाना आई थिंक नामुमकिन ही होता है। इसी ख्याल के साथ निदा फाजली साहब की बात एकदम सही लगती है कि तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमसे छूटकर भी तुम्हें भूलना आसान न था, तुमको ही याद किया तुमको भुलाने के लिए। अपना सोचा हुआ नहीं होता, वरना होने को क्या नहीं होता। उसकी आदत फकीर जैसी है, कुछ भी कह लो खफा नहीं होता। न मसलते यूं संग दिल इसको, दिल अगर फूल सा नहीं होता। याद आते न शबनमी लम्हे, जख्म कोई हरा नहीं होता। ख्वाब में होती है फकत मंजिल, पर कोई रास्ता नहीं होता। इश्क बस एक बार होता है, फिर कभी हौसला नहीं होता। हद से गुजरे हजार बार भले, हद से गुजरे हजार बार भले, दर्द फिर भी दवा नहीं होता। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर गजलों का कारवां, कारवां गजल। इस कारवां को आगे बढ़ाते इन नगमों और गजलों के साथ।

अजब दिन थे कि इन आंखों में कोई ख्वाब रहता था। कभी हासिल हमें खसखाना और बर्फाब रहता था। उभरना डूबना अब कश्तियों का हम कहां देखें, वो दरिया क्या हुआ जिसमें सदा गिरदाब रहता था। वो सूरज सो गया है बर्फजारों में कहीं जाकर, धड़कता रात दिन जिससे दिले बेताब रहता था। निले के साथ हैं आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। फासला रख के भी क्या हासिल हुआ, आज भी उसी का कहलाता हूं मैं। जब कोई किसी से दिल से मोहब्बत करता है ना, तो जैसे दो रूह एक हो जाती हैं। रस्म उल्फत निभाना इतना भी आसान नहीं होता, जमाने की बनाई दीवारों को तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता। जनाब मोहब्बत का एक और नाम है दीवानगी, जो इस कदर सर चढ़कर बोलती है कि उन्हीं लम्हों को ताजा किया करता है दिल जो साथ गुजारे थे। आज भी वही पहचान सही लगती है जो उसके नाम के साथ जुड़ी हो। हमारी पहचान है मोहब्बत, जो दिल से दिल को जोड़कर रखती है। जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, जिसे पढ़ते तो याद आता था तेरा फूल सा चेहरा, हमारी सब किताबों में एक ऐसा बाब रहता था। सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, सुहाने मौसमों में उसकी तुगयानी कयामत थी, जो दरिया गर्मियों की धूप में पायाब रहता था। मुफलिसी में ख्याल अब हमसे कोई वादा वफा नहीं होता।

मोहब्बत और दोस्ती कहीं ना कहीं एक ही राह की ओर चलने वाले दो मुसाफिरों की तरह होते हैं। वो मुसाफिर जो साथ होते हुए भी कई बार नजरें चुरा लेते हैं। दोस्त अगर बरसों बाद मिले तो नजरें मिलाकर दिल का हाल बयां कर देते हैं, वहीं मोहब्बत अगर बरसों बाद मिले तो नजरें चुरा कर उसके खो जाने का एहसास करा देती है। इसीलिए हुजूर निले आपसे कह रहा है कि दोस्त हो या मोहब्बत, दिल में संभाल कर रखिए, नजरें चुरा कर नहीं नजरें मिलाकर मिलिएगा। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि जरूरी तो नहीं कि शायरी वो ही करे जो इश्क में हो, जिंदगी भी कुछ जख्म बेमिसाल दिया करती है। सदर एक आरमाई गजल रेडियो हम सफर निलय के साथ, दिल पर हाथ रखिए और अपनी मुस्कान को बरकरार रखिए। पेश खिदमत है अगली गजल आपके लिए। अजब एक शोर सा बरपा है कहीं, कोई खामोश हो गया है कहीं, है कुछ ऐसा कि जैसे ये सब कुछ अब से पहले भी हो चुका है कहीं, जो यहां से कहीं न जाता था वो यहां से चला गया है कहीं, तुझको क्या हो गया कि चीजों को कहीं रखता है ढूंढता है कहीं।

यह हकीकत है कि वक्त सब कुछ बदल देता है। एक उम्मीद रहती है कि अनजाने में ही वक्त कई बार सब कुछ बेहतर कर देगा। वक्त जाते हुए किसी को दिखता नहीं। बीता वक्त कितनी सारी यादें समेटे हुए होता है, जिंदगी के लम्हे समाये हुए होता है, और हम इसी उम्मीद में वक्त गुजारते हैं कि वक्त के सहारे हम इस दर्द को सह ही जाएंगे। हवाएं बहती हैं और ऐसा लगता है जैसे तुमने मुझे छुआ है, और फिर वो छुपाया हुआ दर्द आंखों की नमी में कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता। सामने का नजारा कब धुंधला हो जाता है पता ही नहीं चलता। ये तीर दिल में मगर बेसबब नहीं उतरा, कोई तो हर्फ लबे चरागार से निकला था। मैं रात टूट के रोया तो चैन से सोया, कि दिल का दर्द मेरे चश्मे तर से निकला था। वो कैसे अब जिसे मजनू पुकारते हैं फराज, मेरी तरह कोई दीवाना घर से निकला था। आप सुन रहे हैं कारवाई गजल अपने रेडियो हम सफर निले के साथ। रेडियो ब्रिस्वानी पर सुनते रहिए।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31st में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो briswani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

वेलकम बैक ख्वातिनो हजरात। एक ख्याल आपसे बांटना चाहूंगा कि दुनिया की इस भीड़ में अपनी पहचान बहुत जरूरी है भाई। छोटी ही हो अपनी पहचान, लेकिन वो होती अपनी ही है। किसी के साए में उम्र गुजार देना आसान जरूर होता है। हर शख्स को कोशिश करना चाहिए कि दुनिया की भीड़ में उसका भी अपना एक नाम हो। कुछ लोगों के ही सही, पर दिलों पर उसका भी नाम हो। और जब कोशिशों के बाद अपनी पहचान बन जाती है, तब वो खुशी, वो एहसास, वो जज्बा, वो सब कुछ मिल जाता है जिसे बयां कर पाना भी मुश्किल होता है। पर जनाब संभल कर, क्योंकि हम कई बार नाम को बड़ा करने के लिए जब सहारे की तलाश करते हैं ना, तब इस बात पर गौर जरूर फरमाइएगा, क्योंकि बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना। जहां दरिया से समंदर मिले, दरिया नहीं रहता। सुनते रहिए रेडियो बिस्वानी पर कारवाई गजल निले के साथ। आपके इस शहर में गुजारा नहीं, अजनबी को कहीं पर सहारा नहीं। बह गया मैं अगर तो बुरा क्या हुआ, खींच लेती किसे तेज धारा नहीं। आरजू में जन्म भर खड़ा मैं रहा, आपने ही कभी तो पुकारा नहीं। हाथ मैंने बढ़ाया किया बारह, हाथ मैंने बढ़ाया किया बारह, आपको साथ मेरा गवारा नहीं। कभी

दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आप जो भी काम कर लीजिए उनको आप खुश नहीं कर सकते। नुक्स निकालते हैं वो, और नुक्स निकालना उनकी आदत में शुमार होता है। ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेहतर होता है भाई। इसी तरह से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको आप जान से भी अजीज समझते हैं, पर वक्त बदलते ही वो भी ऐसे बदल जाते हैं मानो कभी हाथ में हाथ था ही नहीं। ऐसे मिलते हैं जैसे कभी हम सफर थे ही नहीं, कभी हम भी इस कदर करीब थे, दिलो जान से बढ़कर अजीज थे, मगर आज ऐसे मिला है वो कभी पहले जैसे मिला ना हो। सारी उम्मीदें, वादे, वफा जैसे सिर्फ नाम के थे। कभी तो चौंक के देखे वो हमारी तरफ, किसी की आंख में हमें भी इंतजार तो दिखे। तभी एक और दिल ये भी कहता है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। अजीब बात है, खुद से नजर चुराता है मगर वो दूसरों को आईना दिखाता है। जो कल तलक मेरी उंगली पकड़ के चलता था वो शख्स आज मुझे रास्ता दिखाता है। उसे खबर है कि बन जाएगी मेरी जां पर, मगर वो फिर भी मेरा जर्फ आजमाता है। बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, बहुत गुरूर न कर अपनी खुशनसीबी पर, नसीब आज हंसाता है कल रुलाता।

जरा सी बात का मलाल करते हो, शिकायतें भी वही हैं जहां मोहब्बत है। कितनी सही बात है ना ये। बाकी जहां मोहब्बत होती है वहीं उम्मीद भी होती है, और इसीलिए शिकायतें भी होंगी ही। लेकिन हुजूर, ज्यादा उम्मीदी भी बड़ी गलत है, क्योंकि इससे रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतने ही नुकसान में रहेंगे। कई बार बात को रखने के लिए यूं ही हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। लेकिन सोचिए, क्या ये सही है? बनावटी रिश्तों को बनाए रखना ना उम्मीदी को बुलावा देने जैसा है। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूं आवाज में असर के लिए। आपका और मेरा रिश्ता न झूठे वादे पर टिका है और न किसी उम्मीद पर। आपका और मेरा दिल से दिल का नाता यूं ही नहीं बना है। इसी एतमाद और यकीन के साथ अगली गजल आपके लिए पेश कर रहा हूं, सुनिए। अदाए हैरते आईना गर भी रखते हैं, हमें न छेड़ के अब तक नजर भी रखते हैं। न गिर्दो पेश से इस दर्जा बेनियाज गुजर, जो बेखबर से हैं सबकी खबर भी रखते हैं। कफस को खोल मगर इतना सोच ले सयाद, बहुत असीर तेरे बालों पर भी रखते हैं। फरिश्ता है तो तकद्दस तुझे मुबारक हो, हम आदमी हैं तो ऐबो हुनर भी रखते हैं।

वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं कारवाई गजल निले के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। आपने कभी सोचा है कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं उन हर्फों का जरिया बनाकर शायर कितने ही सारे ख्याल हमारे दिलो दिमाग में उतार देता है। शब्द कहिए या कई बार रंग कहिए, सब जैसे बोलते हैं हमसे, कुछ ना कुछ कहना चाहते हो। बस उनकी भाषा समझनी जरूरी है, उनके अंदाज को अपनाना जरूरी है। लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, लेकर चले थे कारवां कुछ जज्बातों का, बस कुछ देर और ठहर कर उठ जाना है। मैं निले हूं, थोड़ी देर और आपके साथ। आप सुन रहे रेडियो ब्रिस्वानी पर कारवाई गजल, सुनते रहिए। अपनी आंखों को अकीदत से लगा के रख ली, तेरी दहलीज की मिट्टी थी उठा के रख ली, तुझको तकते ही रहे रात बहुत देर तलक, चांद की ताक में तस्वीर सजा के रख ली, दिल सी नौखेज कली तेरी मोहब्बत के लिए, सींच के जज्बों से पहलू में खिला के रख ली, इस नए साल के स्वागत के लिए पहले से हमने पोशाक उदासी की सिला के रख ली, दम उलझता था शबे तीरा का तारीखी से, इसलिए चांद की कंदील जला के रख ली।

जब दो लोग प्यार में एक साथ रहते हैं तो आदत पड़ जाती है एक दूसरे की। वक्त आने पर ना आदत छूटती है और ना प्यार। वेलकम बैक, मैं हूं नीले आपके साथ और आप सुन रहे हैं कारवाई गजल। प्यार भी तो आदत की तरह होता है, कुछ रिश्ते भी तो आदत बन जाते हैं, ऐसी आदत जिनको बदल पाना नामुमकिन सा हो जाता है। ना कोई छोड़ रहा है ना कोई खींचता है, मैं अपने आप बहे जाता हूं नदी की तरह, न डूबता हूं न रुकता हूं न सूखता हूं, उस एक शख्स को तलाशते हुए, उस आदत को संभाले हुए एक उम्र सी गुजर जाती है, रेत पर उसके पैरों की मोहरों को तकते हुए एक उम्र सी गुजर जाती है। चलिए सुनते रहिए कारवाई गजल, इस महफिल को अंजाम तक पहुंचाने का वक्त बस हो ही चला है, आप तो बस बने रहेगा हमारे साथ। अजब मौसम है, मेरे हर कदम पे फूल रखता है, मोहब्बत में मोहब्बत का फरिश्ता साथ चलता है, मैं जब सो जाऊं इन आंखों पे अपने होंठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, हर आंसू में कोई तस्वीर अक्सर झिलमिलाती है, तुम्हें आंखें बताएंगी दिलों में कौन जलता है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, मोहब्बत गम की बारिश है जमीन सरसब्ज होती है, बहुत से फूल खिलते हैं जहां

कहते हैं ना कि वक्त किसी का गुलाम नहीं होता, वक्त की बात माननी पड़ती है भाई। और ये दस्तूर है कि हर मुलाकात का अंजाम जुदाई है, लेकिन इस जुदाई में भी साथ रहेगी आपकी यादों की खुशबू। जो वक्त आपने मेरे साथ गुजारा, मैंने जो आपके साथ गुजारा है, उसे याद करते करते हम अगले हफ्ते फिर मिलने आ जाएंगे। तो दीजिए मुझे इजाजत, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें भी याद कर लिया कीजिएगा, और हाँ, अपने चेहरे की मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। सुनते रहिएगा रेडियो बृजवाणी, इन्हीं बातों के साथ गजलों का एक कारवां अपनी मंजिल तक आ पहुंचा। तो आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द अगले संडे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जाते जाते कुछ कह देता हूँ आपके लिए, अपनी जुल्फों को सितारों के हवाले कर दो, शहरे गुल बादा गुसारों के हवाले कर दो, तलखिए होश हो या मस्तिए इदराक जुनू, तलखिए होश हो या मस्तिए इदराक जुनू,

आज हर चीज बहारों के हवाले कर दो, मुझको यारो न करो रहनुमाओं के सुपुर्द, मुझको तुम रह गुजारों के हवाले कर दो, जागने वाले का तूफान से कर दो रिश्ता, जागने वालों का तूफान से कर दो रिश्ता, सोने वालों को किनारों के हवाले कर दो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज, नमस्कार, टेक केयर।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्या कहा?

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
2: तेरी शिकायत कर दूं

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसे संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उहनां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: का मुझ पे असर, मैं दुनिया से बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: दिस इज अमिताभ बच्चन
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
2: हाय गाइस, आई एम मनमीत फ्रॉम द मीत ब्रदर्स। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: हाय, दिस इज सलमान खान और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: हाय, दिस इज दीपिका पादुकोण और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज आलिया।
6: हाय, मैं हूं तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी से।
7: टू एवरीवन ट्यूनिंग इनटू रेडियो ब्रिसवानी, दिस इज शाहरुख खान।
8: हाय, दिस इज अजय देवगन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसोग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसोग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsog.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर, QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई, खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: Earn money from your empty drink containers with Containers for Change. Your empty eligible cans, bottles and cartons receive a 10 cents refund each. We call it bin coin. Save, spend or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।

कंटेनर्स फॉर चेंज राहीं अपने खाली डब्बियां बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इसनू असी बिन क्वाइन कहिंदे हां। अपने बिन क्वाइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दिओ। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना कि कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाउणा शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: रही हूँ।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी, कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहाँ होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेज, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट। आज का

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: अर्न मनी फ्रॉम योर एम्प्टी ड्रिंक कंटेनर्स विद कंटेनर्स फॉर चेंज। योर एम्प्टी एलिजिबल कैंस, बॉटल्स एंड कार्टन्स रिसीव अ 10 सेंट्स रिफंड ईच। वी कॉल इट बिन कॉइन। Save, spend, or donate your bin coin to a cause you support. There's a Containers for Change near you. Bank it, don't bin it. Visit the website to find your nearest refund point and start trading for 10 cents today.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400644 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4 जून से संडे 7 जून तक और फाइनल्स संडे 14 जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब 174 मोर्टिमर रोड अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisvani.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना।
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

दुनिया के किसी भी कोने में रहा, तुमसे कितना भी फासला रहा, यकीन मानो बचपन से आज तक हर पल हर मोड़ तुम्हें साथ पाया। समझ नहीं आता इस रिश्ते को क्या कहूं। यार तुम कहो तो आज इसे एक नाम दूं।

हर सुबह हम फिर से जन्म लेते हैं और आज जो हम करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो ब्रजवाणी 1701 AM पर मैं सताक्षी आज एक नई सुबह में आपके साथ फिर से हूँ। सुप्रभात आप सभी को। अक्सर रातें हम सबके जीवन की अंधेरी होती हैं। बहुत सारी उम्मीदें पिछली रातों में आपकी भी पूरी कहाँ हुई होंगी, लेकिन कहते हैं ना कि हर सुबह एक मौका होता है आपकी जिंदगी में जो कल नहीं हासिल किया उसे पाने का। हर सुबह हमारा एक नया जन्म होता है। कल जो गलतियां हुई हैं उन्हें भूल जाइए। आज आज से अपने जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अगर आपने अपनी गलतियों को रियलाइज कर लिया है, जो कदम आपने उठाए थे उनमें जो कमी रह गई थी उन कमियों को रियलाइज कर लिया है, तो ये मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा या आप हार गए या आपसे गलती हो गई। वो गिल्ट आज खत्म कर दीजिए। आज एक नया जन्म है आपका और आज एक नई शुरुआत कीजिए। आइए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं हमारे जीवन आधार की भी, रेडियो ब्रजवाणी 1701 AM पर, और आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ जीवन आधार। अक्सर आप अपने जब जिंदगी की कोई परेशानियां होती हैं या जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है तो आप दूसरों को दोष देते हैं, ईश्वर को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं, अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो आप आज करते हैं, जो आपके कर्म है, वही कल आपकी रियलिटी बनते हैं। और आप जो दूसरों के साथ करते हैं, जो आप इस यूनिवर्स को देते हैं, वही रिफ्लेक्ट होकर आपके पास वापस आता है। तो जैसा आपने किया है वैसा ही आपके पास आ रहा है, और जब वही आपके पास आ रहा है तो किसी और से नाराज क्यों होना है? फिर चाहे ईश्वर हो या फिर कोई इंसान हो, गलती उसकी नहीं है। क्योंकि अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपकी जिंदगी में अंधेरा खड़ा नहीं कर सकती। मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन अगर वो आपकी जिंदगी में ठहर रही हैं या आपको बार बार नुकसान पहुंचा रही हैं तो इसका सीधा मतलब है कि वो आपके कर्मों का ही परिणाम है। आइए इसी बात को सोचते हुए, जरा इस पे गहराई से मंथन करते हुए आगे बढ़ते हैं। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं जीवन आधार।

आधार को एक बार फिर से आप सोच रहे हैं आज, समझ रहे हैं आज, और जीवन के आधार पर ही आप आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जिंदगी का ये जो नया दिन है, जो नई शुरुआत है, इसमें अपने जीवन के बेस को समझकर उसे संवारने की कोशिश का नाम ही तो जीवन आधार है। इसी बात पर, इसी थॉट के साथ आगे बढ़ते हैं अपने सफर में। सुनते रहिए जीवन आधार और सुनिए अभी ये अगला गीत।

शांति, पीस। आज पूरा विश्व यही तो चाहता है कि पीस हो, लेकिन विश्व को, संसार को, देशों को छोड़ दीजिए। क्या हमारे और आपके मन में है ये पीस? क्या हमारा और आपका मन शांत है? हम सबका मन अशांत है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन इस शांति से हम दूर ही हैं। ये शांति हमारे जीवन में आ ही नहीं रही है। तो ऐसा क्या करें कि जीवन में ये शांति बस जल्दी से आ जाए? इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन उसे करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जिस समय हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना आरंभ कर देता है, उसी वक्त, उसी समय हमारे जीवन में शांति आ जाती है। हमारी परेशानी ये है कि हम ना तो दूसरों को अपने से आगे निकलते हुए देख सकते हैं और ना ही उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। अच्छा सोचिए, आपका मन अपने आप शांत होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं, तब तो यकीन मानिए आपके मन की शांति को कोई छीन ही नहीं सकता है आपसे। बहुत पीस में रहेंगे आप। आइए इस बात के साथ आगे बढ़ूंगी एक और गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी और रहिए सताक्षी के साथ।

साक्षी के साथ जीवन को आप आज एक बार फिर से समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे और आपके खास सफर जीवन आधार में। और इस एक और गीत के साथ इसी सफर में बढ़ूंगी आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी, आपको सुप्रभात एक बार फिर से, और यूं ही रहिए हमारे साथ।

कभी कभी ना आपको एक पल के लिए दुनिया से खुद को एकदम अलग करना पड़ता है, एकदम अलग, ताकि आप खुद को रिसेट कर सकें। और इसे करने के आज के वक्त में बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मुश्किल जरा ज्यादा है, क्योंकि उन चीजों से आप अलग नहीं रह सकते जिनको आपको छोड़ना है, जिनसे आपको दूर होना है, जैसे कि आपका मोबाइल फोन। बस एक छोटा सा काम कि आप कुछ दिनों के लिए किसी ऐसी जगह चले जाएं जहां आप खुद के साथ आत्ममंथन कर पाएं, आप मेडिटेशन कर पाएं। और इसको लेकर आज कई सारे आश्रम भी हैं, कई सारे जगह भी हैं, कई सारे मेडिटेशन सेंटर्स भी हैं। आप अगर वहां जाकर सबके साथ मिलकर मेडिटेट करना चाहते हैं, खुद पर ध्यान देना चाहते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आप यूं ही अपना बैग उठाइए और निकल पड़िए प्रकृति के गोद में, प्रकृति के नजारों का मजा लेते हुए, और खुद को जानने की, खुद को समझने की एक छोटी सी कोशिश कर डालिए और उसके बाद वापस लौटिए। बस शर्त यह है कि आपको बाकी की दुनिया से एकदम कट जाना है, आपके मोबाइल फोन से भी, क्योंकि मन की शांति भंग वहीं पर होती है जहां आपके हाथ में फोन और दुनिया के साथ कनेक्शन आ जाता है ना। तो अगर आप रीसेट अपनी जिंदगी को करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के कुछ हल ढूंढना चाहते हैं, तो करके देखिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर जीवन आधार। आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ।

जीवन के आधार को समझने का ये संकल्प है हमारा और इसीलिए हम हर रोज रेडियो प्रसारणी के इस खास सफर जीवन आधार में आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको भी अपने साथ जोड़कर जीवन में साथ साथ आगे बढ़ने का जो हमारा वादा है आपसे उसे निभा रहे हैं। इस एक और गीत के साथ अभी बढ़ूंगी आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और यूं ही रहिए मेरे साथ।

जीवन के दो फेजेस आते हैं। एक फेज आपके लिए बहुत मजबूत होता है, मतलब आपके पास रुपया है, पैसा है, रिलेशंस हैं, पोजीशन है, सब कुछ है, आप हर तरह से स्ट्रांग हैं। वहां पर ना दोस्तों, उस सिचुएशन में आपके अंदर एक ईगो आ जाता है। और जीवन में जब वो फेज आता है जब आप कमजोर हो जाते हैं, आपसे शायद रुपए, पैसे, रिलेशंस, बहुत सारी चीजें आपसे छिन जाती हैं, आप अकेले पड़ जाते हैं, उस समय आप कमजोर होते हैं। लेकिन करना आपको इसका ठीक उल्टा है। जब आपके पास सब कुछ है ना, तो ऐसा प्रिटेंड कीजिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है, एकदम कमजोर रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए, लोगों से प्यार से, मोहब्बत से मिलिए, अपने अंदर ईगो मत आने दीजिए। और जब आपके पास कुछ भी ना बचे, जब कमजोर होने का फेज हो, तो मजबूत रहिए मन से, अपने विचारों से, एक कॉन्फिडेंस के साथ कि ये फेज भी गुजर जाएगा। और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी आसान हो जाती है। आइए इसी जिंदगी के नाम, इसी जीवन के नाम बढ़ते हैं इस अगले गीत के साथ आगे। सुनते रहिए रेडियो ब्रसवानी 107.1 AM पर, जीवन आधार आपकी सताक्षी के साथ।

अभी अजीब है ना दोस्तों, दुख से बचने के लिए लोग अक्सर सुख से बचते हैं। दुख जब जिंदगी में आता है तो दुखे हैं, दुखी हैं, दुखी हैं कहते हैं, और उन पलों में अक्सर हम अपनी जिंदगी के छोटे छोटे जो सुख हैं, छोटी छोटी जो खुशियां हैं, उन्हें जीना भूल जाते हैं। मृत्यु आ जाएगी, हम इस दुनिया से चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाएंगे कहते कहते हम अपनी जिंदगी को नहीं जी पाते हैं। यानी जो हमारे पास आज है हम उस पर ना ध्यान देके हम कल कैसा होगा उस पर ध्यान देते हैं। हमारी जिंदगी में दुख आएगा, हमारी जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आएगी, इस लिहाज से हमारी जिंदगी ही हमसे कब दूर हो जाती है इस बात का हमें पता भी नहीं चलता है। सोचा है कभी? नहीं सोचा तो सोचिए, और आइए आगे बढ़ते हैं इसी सोच के साथ, इस अगले गीत के साथ भी। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर सताक्षी के साथ जीवन आधार।

ये था आज एक और हमारा आपका खास सफर, जीवन के आधार से जुड़ा और जीवन के आधार से ही बना। इस एक और सफर पर आज हमने अपनी ही जिंदगी को समझने की एक और छोटी सी कोशिश की, कुछ ऐसे थॉट्स के साथ जो हमारे जीवन से, हम इस संसार की सच्ची बातों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ थॉट्स और विचारों के साथ कल फिर से जीवन आधार में होगी आपसे एक छोटी सी मुलाकात। आज लूंगी विदा, नमस्कार।

0: कंटेनर्स फॉर चेंज के माध्यम से अपने खाली डिब्बे बोतलों से धनराशि कमाएं। आपके प्रत्येक योग्य खाली कैन बोतल और कार्टन पर 10 सेंट का रिफंड प्राप्त होता है। इसे हम बिन कॉइन कहते हैं। अपने बिन कॉइन की बचत करके रखें, खर्च करें या जिस उद्देश्य में आपका विश्वास है उसमें दान करें। आपके नजदीक कहीं एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक में डालें ना कि कूड़ेदान में। अपना सबसे नजदीकी रिफंड पॉइंट ढूंढने के लिए वेबसाइट पर जाएं और आज ही 10 सेंट कमाना शुरू करें।
1: कंटेनर्स फॉर चेंज राही अपने खाली डब्बिया बोतलों तो कमाई करो। तुहाडे हर एक योग खाली कैन बोतल अते कार्टन उते 10 सेंट दा रिफंड प्राप्त हुंदा है। इस नू असी बिन कॉइन कहंदे हां। अपने बिन कॉइन नू बचा के रखो, खर्चो जां फिर जिस किसी संस्था जां विषय विच तुहाडा विश्वास है उन्हां नू दान विच दे दियो। तुहाडे नेड़े एक कंटेनर्स फॉर चेंज मौजूद है, बैंक विच पाओ ना के कूड़ेदान विच। अपना सब तो नजदीकी रिफंड पॉइंट लभण लई वैबसाइट उते जाओ अते अज ही 10 सेंट कमाना शुरू करो।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
2: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: जा रही हो।
1: गेट रेडी ब्रिस्बेन, आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हां, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक Under the Stars, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। लॉग ऑन टू brisbani.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।
0: आज

0: on 1701 Brisbane. It's your morning drive show with your host, Amita and Jatish. सुबह का सफर आपके हम सफर जतीश और अमिता।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सभी का प्यार भरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। माफी चाहता हूँ थोड़ा सा देर हो गया दोस्तों, खैर चलो। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यहाँ तो ठंड ज्यादा है यहाँ ब्रिस्बेन में। चलिए आज के लिए कहा गया है 12 और 22, 12 and 22। कल के लिए कहा गया है मौसम साफ रहेगा, सभी दिन मौसम साफ रहेगा दोस्तों। कल के लिए 11 and 25 रहेगा, वेंसडे को 15 and 25 रहेगा, थर्सडे को 13 and 22, फ्राइडे को 13 and 21, सैटरडे को 10 and 21, संडे को 12 and 22। तो ये रहा हमारा ब्रिस्बेन का वेदर दोस्तों, और देखते हैं रास्ते पर क्या हो रहा है। थोड़ा पहले आया था दोस्तों, इप्सविच मोटरवे गेल्स हैज एट ईस्ट बाउंड इज नाउ क्लियर। इन अदर वर्ड्स कुछ खास रास्ते का खबर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो चले आगे बढ़ते हुए, कहा गया है फ्यूल और एलपीजी प्राइजेस, ये फीजी की बात है, में जबरदस्त बढ़ोतरी। आज से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के जो दाम फिर बढ़ गए हैं दोस्तों, डीजल यूजर्स को सबसे बड़ा झटका लगा है। और अपोजिशन ने फ्यूल टैक्स हटाने की मांग की है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के लेकर भी चिंता बढ़ रही है दोस्तों। एनर्जी फिजी लिमिटेड ने कहा है कि 1 जून से शुरू होने वाली जो प्लेन पावर रेशनिंग को अभी के लिए डिफे कर दिया गया है, ये कंस्यूमर्स के लिए एक राहत की खबर है दोस्तों। माफ करना, पॉलिटिक्स गर्म हो रही है दोस्तों। नेशनल फेडरेशन पार्टी ने कहा है कि वो फिजी के भविष्य में लीडिंग रोल निभाना चाहती है, जबकि सुडेलपा ने अपनी इलेक्शन कैंपेन ऑफिशियली शुरू होने का संकेत दिया है। अगले जनरल इलेक्शन की तैयारियां तेज होती दिख रही है। रिजर्व बैंक ऑफ फिजी ने बदलते इकोनॉमिक रिस्क पर चिंता व्यक्त की है, राइजिंग प्राइसेस और ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी को लेकर अथॉरिटीज नज़र बनाए हुए हैं। और बीच डीमा, आप जानते हैं फिजी में एक्सपोर्ट किया जाता है रूरल और मैरीटाइम कम्युनिटीज की इनकम बढ़ाने के लिए, बीच डीमा जो हार्वेस्टिंग सीजन को एक्सटेंड कर दिया गया है, ये कई गांव के लिए एक बहुत अच्छी खबर है दोस्तों। और कावाकावा और दोनों फिशिंग बैंस शुरू, आज से कावाकावा और दोनों मछलियों पर सीजनल बैन लागू हो गई है और हो गया है दोस्तों, ताकि उनकी ब्रीडिंग और कंजर्वेशन को सपोर्ट किया जा सके। तो चले ये रहा कुछ फिजी का समाचार। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान, नंबर है 04300031701। अगर आप कुछ सुनना चाहे या कहना चाहे दोस्तों, यू विल बी मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो आइए और चले आज का जो पहला गीत आप सभी के लिए, और ये बड़ा प्यारा सा गीत है दोस्तों, और चलो शायद आपको भी अच्छा लग जाए।

तो दोस्तों, ये गीत कैसा लगा आपको? उम्मीद है गीत आपको अच्छा लगा होगा। और जी हाँ, आगे बढ़ते हुए दोस्तों, नंबर फिर से बता देता हूँ, 04300031701 या आप 3279171 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, यूक्रेन रशिया जो कॉन्फ्लिक्ट रिमेन्स अ मेजर कंसर्न, फाइटिंग एंड ड्रोन अटैक्स कंटिन्यू टू अफेक्ट पार्ट्स ऑफ यूक्रेन, European and NATO countries remain on alert as security concerns persist across the region. तो ये है दोस्तों, और देखिए, हीट वेव अफेक्ट्स पार्ट्स ऑफ यूरोप। सेवरल यूरोपियन कंट्रीज आर एक्सपीरियंसिंग अनयूजुअली हाई टेम्परेचर्स। हेल्थ अथॉरिटीज आर एडवाइजिंग पीपल टू स्टे हाइड्रेटेड एंड टेक प्रिकॉशन ड्यूरिंग द हॉट वेदर। उधर गर्मी है, इधर ठंड दोस्त।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ये जो गीत था तेरे बिना, गुरु, फिल्म गुरु का गीत अभी आपने सुना। और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, और कहा गया है कि ग्लोबल मार्केट्स को थोड़ी राहत मिली है क्योंकि यूएस ईरान टेंशन को लेकर पीस डील की उम्मीद बनी हुई है। इस वजह से ऑयल प्राइस में गिरावट देखी गई और स्टॉक मार्केट्स ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है दोस्तों, तो ये तो अच्छी बात है। तो चलिए, शायद आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस दुनिया इम्प्रूव होने लगे दोस्तों। मस्त मगन।

और देखिए दोस्तों, स्पेस इंडस्ट्री को झटका। एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के एक रॉकेट इंजन टेस्ट के दौरान एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुआ है। इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है और इंजीनियर्स को उसका पता लगा रहे हैं दोस्तों। नॉट गुड। और इबोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला को लेकर टेंशन बनी हुई है। कुछ एरियाज में पब्लिक एंगर भी देखा गया, जबकि हेल्थ अथॉरिटीज आउटब्रेक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। वाओ, लेट्स होप इट डजंट कम अप टू हियर। जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। और चलिए अरिजीत सिंह एक बार फिर, अगर तुम साथ हो, फ्रॉम तमाशा।

0: गोल भी होगा, ग्रूव भी होगा और फीजी का फ्लेवर भी फुल ऑन होगा। ब्रिस्बेन तैयार हो जाओ। QBOG 2026 सॉकर टूर्नामेंट प्रेजेंटेड बाय क्वींसलैंड फीजी फुटबॉल एसोसिएशन। ड्यू टू द रेनी वेदर QBOG का संडे 31 में गेम पोस्टपोन हो गया है। अब गेम्स होंगे थर्सडे 4th जून से संडे 7th जून तक और फाइनल्स संडे 14th जून को होगा एट अकाशिया रिज सॉकर क्लब, 174 मोर्टिमर रोड, अकाशिया रिज 4110। ग्राउंड पे चलेगा फुल सॉकर का टशन, ओपन्स, मास्टर्स एंड लेजेंड्स। हर मैच में एनर्जी, एक्साइटमेंट और क्राउड का शोर। और भाई खाने का सीन तो और भी डेंजरस है। फिजी स्टाइल बारबेक्यू, स्पाइसी डक करी, यम्मी पुलाव और ठंडी ठंडी फिजी आइस ब्लॉक। तो इन डेट्स पर घर पर मत बैठना, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आ जाना QBOG सॉकर टूर्नामेंट 2026 में। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें अब्दुल रहीम 0423-342-272 या फिर सेक्रेटरी रे अली 0413-868-240 और विजिट करो brisbane.com के इवेंट सेक्शन में। QBOG 2026 आपका इंतजार रहेगा।
1: और दोस्तों 2026 फीफा वर्ल्ड कप प्रिपरेशंस कंटिन्यू विद द टूर्नामेंट अप्रोचिंग। होस्ट नेशंस द यूनाइटेड स्टेट्स, मेक्सिको एंड कनाडा आर फाइनलाइजिंग प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट फुटबॉल इवेंट। ठीक है, और एक जानकारी है दोस्तों, द शॉर्टेस्ट वॉर इन रिकॉर्ड हिस्ट्री वॉज बिटवीन द यूनाइटेड किंगडम एंड ज़ंज़िबार ऑन 27 अगस्त 1896। इट लास्टेड, आप जानते कितना देर तक, इट लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 38 to 45 minutes बिफोर ज़ंज़िबार सरेंडर्ड। एनीवे, हैप्पी बर्थडे, अगर आज आपका बर्थडे है दोस्तों, हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। अगर वेडिंग एनिवर्सरी है तो वेडिंग का एनिवर्सरी, आपको बहुत से खुशियाँ मिले दोस्तों, इसी तरह आप साथ में रहें। और क्या कह सकता हूँ, बस यही है ज़िंदगी। चलो क्विज है, कौन सा गीत है बताइए। मुझे इतना प्यार मत करो कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ, मैं एक आवारा बादल की तरह हूँ, कहीं भी बह सकता हूँ। ठीक है, बताइए कौन सा गीत जो मैंने चुना है आपके लिए। मुझे इतना प्यार मत करो कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ, मैं एक आवारा बादल की तरह हूँ, कहीं भी बह सकता हूँ। तो बताइए दोस्तों, आप तो गाने में बड़े उस्ताद हो सब, तो लेट मी नो। ठीक है, नंबर है 0430031701 या 3279-1701। और हाँ, अमिता अभी भी छुट्टी पर है दोस्तों, अभी 2 हफ्ता और छुट्टी है उनका। शी इज हैविंग अ गुड टाइम आई थिंक, और विच इज़ गुड। और आप भी अगर छुट्टी पर जा रहे हैं तो भाई हैव अ लवली टाइम।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मिज़बानी, आपकी अपनी पहचान। और चलिए आगे बढ़ते हुए दोस्तों, 7:45 बज गए हैं, हमारा साथ रहेगा 9 बजे तक। दोस्तों अनादर लॉस, जी हाँ दोस्तों, शायद आपने सुन लिया होगा या नहीं भी सुने होंगे, सुमन कल्याणपुर द वेटरन प्लेबैक सिंगर सुमन कल्याणपुर हैज़ रिपोर्टेडली पास्ड अवे एट द एज ऑफ 89 इन मुंबई on 31st May 2026, according to multiple Indian news reports. She was one of the most admired voices of Hindi and Marathi music and was often noted for her vocal resemblance to Lata Mangeshkar. Some of her best-known songs include Aajkal Tere Mere Pyar Ke Charche, Na Na Karte Pyar Tumhi Se Kar Baithe, Aur Na Tum Hame Jaano, मेरा प्यार भी तू है बहारे लूटा के। शी वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द पद्म भूषण इन 2023 फॉर हे कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन म्यूजिक। हे पासिंग मार्क्स द लॉस ऑफ वन ऑफ द लास्ट मेजर वॉइसेस फ्रॉम द गोल्डन एरा ऑफ हिंदी फिल्म म्यूजिक। क्या बात है दोस्तों, व्हाट अ लॉस, सब जा रहे हैं दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता। चलिए सुनते इस गीत को, रफी साहब और जी हाँ सुमन कल्याणपुर के साथ।

जी हाँ दोस्तों, अनदर बिग लॉस हमारे इंडस्ट्री के लिए। और क्या कहूँ मैं दोस्तों, सबका समय आता है एक दिन। नथिंग इज परमानेंट, इज़न्ट इट। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान।

Yes, a very catchy song indeed. इसमें बहुत से लोग नाचे हैं, देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों. खैर चलो आगे बढ़ेंगे. The World Health Organization is warning that the heat-related illnesses are increasing as many regions face unusually high temperatures. Heat stress can affect the heart, lungs, kidney, and overall health, particularly among older people and outdoor workers. Or the World Health Organization says most people worldwide consume far more salt than recommended. Reducing sodium intake can lower the risk of high blood pressure, heart disease, and stroke. Or also, dosto, I've noticed people that eat less salt, unka skin bada acha lagta hai. और कभी काल मैं भी इसे भोजन जो बनाता हूँ पसंद है, जब कुछ हमारे यार दोस्त खाते हैं तो कभी एक दो कहते हैं यार थोड़ा नमक कम है, और जबकि मुझे नमक बहुत ज़्यादा लगता है. तो यही सब बातें हैं दोस्तों. मेजर इंटरनेशनल रिपोर्ट हैज़ वॉर्न्ड ऑफ फ्यूचर शॉर्टेज ऑफ कैंसर स्पेशलिस्ट, नर्सेस एंड डायग्नोस्टिक वर्कर्स. Experts say cancer cases are expected to rise significantly in coming decades, putting extra pressure on health system. What are I don't know. Kitna paisa isme lagta hai dosto, researchers itna ho rahe hain, lekin looks like we're going backwards. What is the problem? Chaliye Shararat ka geet from Jinai Shararat geet from Durand.

और हाँ दोस्तों, 8:01 हो गया है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कई देशों में हेल्थ केयर सर्विसेज पर प्रेशर बढ़ रहा है। ग्रोइंग पॉपुलेशन और क्रॉनिक डिजीजेस की वजह से हेल्थ सिस्टम को और मजबूत बनाना या बनाने की ज़रूरत है। और डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट डिजीज जैसे लाइफस्टाइल रिलेटेड इलनेस दुनिया भर में बढ़ रही है दोस्तों। ये जो ऐसी बीमारी है दुनिया भर में बढ़ रही है। रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थ डाइट और अच्छी नींद को सबसे बड़ा माना जा रहा है। सबसे बड़ा जो ये है, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, यानी बचाव माना जाता है। हेल्थ फैक्ट ऑफ द डे, सिर्फ 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक रोज लेने से हार्ट हेल्थ इम्प्रूव हो सकती है, ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद मिल सकती है और मूड भी बेटर हो सकता है दोस्तों। तो ब्रिस्क वॉक अगर 30 मिनट का आप ले तो ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। शुरू कर दें आप। जी हाँ,

जो क्विज मैंने पूछा था दोस्तों, आप लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश से बढ़कर और कुछ तो हो नहीं सकता दोस्तों। अभी तक राइट आंसर नहीं आया है। हाँ, मुझसे इतना प्यार मत करो कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ, मैं एक आवारा बादल की तरह हूँ, कहीं भी बह सकता हूँ। बताइए दोस्तों, कम ऑन, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, नंबर है 04-3003-1701 या 3279-1701 पर आप कॉल कर सकते हैं। और इस समय 8:09 हो गए हैं। और हाँ, इस कार्यक्रम के बाद में आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे।

जी हाँ दोस्तों, फिल्म धुरंधर से इस गीत को भी आपने सुना और रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। कहा गया है कि ब्रेन और स्लीप का कनेक्शन। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब हम सोते हैं तब ब्रेन सिर्फ रेस्ट नहीं करता, वो दिन भर की जो इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और खुद वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी क्लियर करता है। इसीलिए अच्छी नींद मेमोरी और कंसंट्रेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और बात भी सही है दोस्तों, आज कंसंट्रेशन थोड़ा कम है। और कहते हैं कि नट्स और हार्ट हेल्थ। रिसर्च से पता चला है कि आमंड्स, वॉलनट्स और दूसरे जो नट्स को मॉडरेट क्वांटिटी में खाने से हार्ट हेल्थ को फायदा हो सकता है। ये हेल्थ इफेक्ट्स फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए कैसे भगवान ने बनाया हमको और क्या क्या प्रदान किया है ताकि हम अपने आप को देख सकें, है कि नहीं? सोचने वाली बात है दोस्तों, सब कुछ दिया है सो दैट वी कैन स्टे हेल्थी। ठीक है, और साथ साथ में बहुत भी ऐसे चीज़ है जो हमारे लिए बुरे भी होते हैं, तो यू नो, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जो चीज़ ठीक नहीं है तो फिर हम क्यों उसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिगरेट हुआ, अल्कोहल हुआ बहुत ज़्यादा, ये सब। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम प्रोग्राम को चेंज करते हैं दोस्तों, और कुछ पुराने गीत। ठीक है,

0: खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा। जी हाँ दोस्तों, कह चलो थोड़ी देर के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और एक दो एड सुनते हैं, फिर हम वापस आएंगे।
1: बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान तमन्ना के दर जा रही हो।
2: Get ready Brisbane! आ रहा है साल 2026 का सबसे बड़ा और धमाकेदार फैमिली फेस्टिवल, द ग्रैंड मल्टीकल्चरल मेला कार्निवल 2026। शनिवार 13 जून को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ पहुंचिए सुबह बोडा पार्क कुराबी, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ यूनिटी कल्चर एंड प्योर सेलिब्रेशन। यहां होंगे इंडोनेशियाई और फिलिपिनो ग्रुप्स के शानदार स्टेज परफॉर्मेंसेस, इंटरनेशनल फूड स्टॉल्स, शॉपिंग, राइड्स और बच्चों के लिए ढेर सारी फन एक्टिविटीज। और हाँ, शाम 6 बजे से सजेगी एक जादुई शाम, लाइव म्यूजिक अंडर द स्टार्स, तरुण रनीगा, रिकी फ्रॉम सिडनी और दिमान रॉय लेकर आ रहे हैं 1.5 घंटे का धमाकेदार बॉलीवुड म्यूजिकल कॉन्सर्ट फुल ऑफ एनर्जी एंड क्लासिकल हिट्स। एंड वेट, रात को आसमान चमकेगा एक अनफॉरगेटेबल फायरवर्क्स डिस्प्ले। सबसे बेस्ट पार्ट, एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री इंक्लूडिंग पार्किंग। तो डायरी में डेट नोट कर लीजिए, सैटरडे जून 13। ज्यादा जानकारी के लिए राज को कॉल करें 0402-651-045 पर या फरजाना को 0401-428-248 पर। Log on to brisbane.com या melacarnival.com और क्लिक करें इवेंट सेक्शंस पर। डोंट मिस इट।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: और देखिए दोस्तों, साथ में कुछ हम इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूं, और लेकिन सबसे पहले जितने भी लोग सुन रहे, चलो एक बार फिर सभी का स्वागत है रेडियो भिजवानी पर। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग इंटरनेट पर भी है, दूर दूर से आप लोग सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग सोने की तैयारी भी कर रहे होंगे। जी हाँ, चलिए, नींद के बारे में तो मैंने आपको बताया ना। कॉफ़ी पर एक नई रिसर्च, कई स्टडी सजेस्ट करती है कि मॉडरेट कॉफ़ी कंसम्पशन 2 to 4 cups पे डे, दैट्स मॉडरेट फॉर मेनी एडल्ट्स, कुछ हेल्थ बेनिफिट से जुड़ी हो सकती है दोस्तों, लेकिन ज़्यादा कैफीन नींद और एंग्जाइटी को अफेक्ट कर सकता है। कहते हैं कि अगर आपको एंग्जाइटी प्रॉब्लम है तो कैफीन से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और हाँ, एक बात और है दोस्तों, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत देर तक लगातार बैठना हेल्थ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, और चाहे आप एक्सरसाइज भी करते हो, हर 30 to 60 minutes में थोड़ा चलना फिरना फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। ओके, तो चलो गीत और हो जाए तो फिर बाद में आएंगे दोस्तों। और ये गीत जो है, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।

हुई। जी हाँ, रात खली एक ख्वाब में आई और गले के हार हुई। जी हाँ दोस्तों, देखिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ हेल्थ टिप्स पर बातें कर रहे हैं दोस्तों। आफ्टर ऑल क्या बोलते हैं, वी आर व्हाट वी ईट, है कि नहीं। जैसे कि लीफी ग्रीन की ताकत देखो दोस्तों, जैसे पालक हुआ, मोरिंगा लीव्स और दूसरी हरी सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये ओवरऑल हेल्थ और ब्लड हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो। और जैसे विटामिन B12 अवेयरनेस, B12 की कमी से थकान, वीकनेस, नमनेस या टिंगलिंग और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो सकती है। ओल्डर एडल्ट्स, वेजिटेरियंस, ठीक, और वीगन में डिफिशियंसी का रिस्क ज़्यादा हो सकता है। तो अब मैं आगे क्या बोलूँ आपसे, आप नहीं खाते हो ये सब चीज़, तो फिर सीड्स वगैरह सप्लीमेंट्स आप ले सकते हो, ठीक है। तो चले अगला जो गीत है दोस्तों सुनते हैं, और अगला जो गीत है देखा एक ख्वाब, तो ये सिलसिले हुए।

ये जो गीत दोस्तों ये कभी पुराना नहीं होगा, बहुत अच्छा लगता है। वेल, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है कि आपको भी। और देखिए दोस्तों, इस कार्यक्रम के बाद में जैसे मैंने कहा कि आप सुनेंगे इट हैपन्स सताक्षी के साथ, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ पंजाबी प्रोग्राम आप सुनेंगे, और 3 बजे से निविया के साथ आप हो जाएंगे। तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा दोस्तों। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हेल्थ फैक्ट ऑफ द डे मैं आपको बताना चाहता हूँ, तैयार है आप? कहते हैं कि हंसना वाक्य सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। हंसी स्ट्रेस हॉर्मोन्स को कम करने और मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। तो आप से कितने लोग हैं जो हमेशा हंसते हैं? ऐसा हंसो दोस्तों, लोट पोट कर हंसो, आप चाहे गिर जाए चाहे ऐसे कोई बात नहीं, ये आपके लिए शायद हाथ पैर टूट जाए लेकिन वैसे हेल्थ के लिए आपके लिए और अच्छा होगा। गए चलो, जब से तुम्हें देखा है आशा भोसले और रफी साहब के साथ फिल्म घराना से।

जी हाँ, मैंने कहा था कि अगर चेयर पर से गिर भी जाए, चोट वोट लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हंसना यानी कि आपकी ऑर्गन्स के लिए बहुत ठीक है। ठीक है, तो जी हाँ दोस्तों, रेडियो मिजबानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान। चलिए कहा, और बहुत प्यारा सा गीत है, रंग बदलती दुनिया में इंसान के लिए ठीक नहीं है। निकला ना करो तुम सज बज कर।

ना ये प्यार मोहब्बत रहने दो, कश्ती को संभालो मौजों से।

जी हाँ दोस्तों, और एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सा गीत है आपको बताना है। आपको कल मैं गीत सुनाऊंगा, लेकिन चलो अभी भी आपका पास टाइम है, ट्राई करते रहिए, कोशिश करते रहिए दोस्तों, शायद आपको राइट आंसर मिल जाए। मैंने पूछा था मुझसे इतना प्यार मत करो कि मैं खुद को संभाल ना पाऊँ, मैं एक आवारा बादल की तरह हूँ, कहीं भी बह सकता हूँ। तो कौन सा गीत है दोस्तों, लेट मी नो, टेक्स्ट टू मी या जो कुछ भी हो, कल हम न्यूज़ के बाद आपको बताएंगे, ठीक है।

और दोस्तों देखिए, बस समय हो चुका है इस प्रोग्राम का। आपने सब समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वो भी देखिए, आज का जो गीत मैं लेकर आया था आपको पसंद आया होगा। आज का मूड कुछ थोड़ा ऐसा बना हुआ था दोस्तों, इंसान अब मूड बदलता रहता है दोस्तों, है कि। तो चलिए, अब एक आखिरी गीत है और फिर जैसे मैंने कहा कल मैं आपसे मिलूंगा, लेकिन भूलना मत अभी आप सताक्षी के साथ हो जाएंगे, फिर 11 बजे संदेश पंजाबी प्रोग्राम और 3 बजे से निविया के साथ, तो कार्यक्रम ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। मिलता हूँ फिर से कल सुबह, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, खुदा हाफिज़।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। रेडियो ब्रिजवाणी 1701 एम पर सताक्षी आ गई एक बार फिर से आपके लिए लेकर आपका मॉर्निंग शो, आपका ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। तो सबसे पहले ये बताइए भाई कि कैसे हैं आप और कैसी है ये मॉर्निंग आपके लिए। आई होप कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जबरदस्त होगी भाई, क्यों ना हो। जो जिंदगी हम ठान लेते हैं कि बेहतरीन होगी वो ऑटोमेटिकली बेहतरीन होती चली जाती है ना। तो चलिए फिर अपनी जिंदगी को कुछ रंग देते हैं, कुछ इसे खूबसूरत बनाते हैं और कुछ आज खुद से वादा करते हैं कि अपनी जिंदगी हम हंसकर खूबसूरती के साथ और जिंदगी को बिंदास जीते हुए बिताएंगे। और इसी विश के साथ कि हम सबकी जिंदगी बहुत बेहतरीन रहे, चलिए शुरू करते हैं आज का इट हैपेंस रेडियो ब्रिजवाणी 1701 एम पर। दोस्तों एक बार फिर से इस सफर में मैं सताक्षी हूँ आपके साथ और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के कुछ बहुत ही प्यारे गाने। आइए फिर इसके पहले कि अपनी बातों का सिलसिला शुरू करें, एक बढ़िया से ट्रैक को सुनते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिजवाणी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।

बैक इट हैपेंस एंजॉय कर रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। और इसके पहले कि हमारी जो बातें हैं उनका सिलसिला शुरू करें, क्योंकि बातों का सिलसिला शुरू होने के बाद तो हमें फिर कुछ और याद रहने वाला है नहीं, तो इसके पहले कि हम बातों का सिलसिला शुरू करें, आइए आज के दिन को खास बनाते हैं उनके लिए जिनके लिए आज का दिन ऑलरेडी बहुत खास है। तो जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और हम विश करते हैं कि आपकी जिंदगी ढेरों ढेर खुशियों से आबाद रहे, भरी रहे, और आप जिंदगी के हर एक लम्हे को एंजॉय करें। जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, और आज का ये दिन वो चाहते हैं कि रेडियो ब्रिस्वानी खास बना दे। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी शादी की सालगिरह। और आप दोनों एक दूसरे के लिए एक्चुअली सच बताऊं बहुत ही खास और स्पेशल हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे के साथ हैं। जी हाँ, ईश्वर जो है वो दो लोगों को जब एक दूसरे के साथ लाता है, और कहते हैं ना कि इस दुनिया में किसी ना किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया जरूर गया है, तो ईश्वर जब दो लोगों को साथ में लाता है तो खास ही होते हैं, क्योंकि वो खास लोग ही साथ आ सकते हैं, वरना तो फिर हजारों लोग हैं दुनिया में, लाखों लोग हैं, राइट? सो इसलिए इस खास रिश्ते को और भी खास बनाइए, और एक दूसरे से मोहब्बत और एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाते चलिए। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास इसलिए है क्योंकि आज उनके लिए कुछ खास होने वाला है, स्पेशल होने वाला है, आज के दिन से उन्हें कुछ बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। सबकी हर उम्मीद हर विश पूरी हो, इसी विश के साथ आइए आप सबको डेडिकेट करते हैं ये अगला ट्रैक। सुनते रहिए इट हैपेंस और रहिए सताक्षी के साथ।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
8: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
10: प्रिया, next month मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
11: अच्छा,
10: वो क्या? अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
11: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
10: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.

सो वेलकम बैक इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर और मेरे साथ सुन रहे हैं कुछ बहुत ही प्यारे और खूबसूरत से मॉर्निंग ट्रैक्स। वैसे हम सबको लगता है कि हाँ कहना मोहब्बत है और ना कहना बदतमीजी। एक्चुअली बचपन से हमें पीपल प्लीजर बनना सिखाया गया है, पर दोस्त जब हमारा दिल टूटता है या तुम्हें एहसास होता है कि तुमने कितनी बार हाँ कहा जब तुम्हारा मन नहीं था या तुम्हें ना कहना था, तुम्हारे अंदर से आवाज आ रही थी और तुम हाँ कहते चले गए, तो तुमने कितनी बार अपने आप को तकलीफ दी है, और वो भी उस इंसान के लिए जिसको शायद ना तो तुम्हारी वैल्यू है और ना तुम्हारे प्यार की, तो तकलीफ इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अक्सर हम खुद से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो भाई ख्याल रखिए, जिंदगी इसलिए तो नहीं है कि हम उसे इस तरह से जाया कर दें, है ना। तो ना कहना जो है उसकी जो खूबसूरती है ना की, उसकी आदत डालिए, और जहां पर अनकंफर्टेबल हो वहां बिल्कुल हर चीज के लिए ना कहिए। और ना कहने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं भाई। ना कहने का तरीका बहुत ही पोलाइट रखिए और बस अपनी बात को कह दीजिए। आइए आपको आगे लेकर चलती हूँ, एक और गाना सुनिए मेरे साथ और सुनते रहिए इट हैपेंस आपके अपने रेडियो प्रस्वानी पर।

इटहैपेंस सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। जी हाँ, इटहैपेंस वो साथ जिसकी खूबसूरती आपके साथ कायम है, बरकरार है, और इस खूबसूरती के साथ जिंदगी के कुछ रंगों को समेटने की, कुछ रंगों को भरने की हम कोशिश कर रहे हैं आपके साथ, क्योंकि हमें पता है कि यार जिंदगी के रंग ना भरने पड़ते हैं। भरे भराए पेजेस नहीं आते, कलरफुल पेजेस नहीं आते आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में ब्लैंक पेजेस आते हैं। कैसे आप उन कलर्स को फिल करेंगे, कौन से आपके फेवरेट कलर्स होंगे और उनके साथ आपकी जिंदगी का वो पेज लिखा जाएगा, उस दिन का पेज लिखा जाएगा, ये बहुत बहुत खूबसूरत बात है। और ज़रूर अपने जिंदगी की बुक में ऐसे पेजेस भरिए जो आपको जिंदगी से भर दें। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ, और सुनते रहिए इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
4: गानों के हैट्रिक सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी पर। जी हाँ, आज के बैक टू बैक ट्रैक्स कौन से हैं, कौन से हैं, आइए सुनवाते हैं ये पहला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी।

रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं इटहैपेंस। रेडियो ब्रिस्बेन पर इस वक्त इटहैपेंस में आपको सुनवा रही हूँ गानों की हैट्रिक, और गानों की हैट्रिक के इस एक और गाने के साथ आइए लेकर चलती हूँ आपको आगे। यूं ही सुनते रहिए मुझे और एंजॉय करते रहिए मेरे साथ कुछ बेहतरीन गानों का ये साथ।

0: इट हैपेंस सुन रहे हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी पर दोस्तों, और इट हैपेंस में गानों की हैट्रिक का लास्ट ट्रैक आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। एंजॉय कीजिए एंड बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए इट हैपेंस।
1: बदले

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006444355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

टैपेंस पर सताक्षी का साथ आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कई खूबसूरत और बेहतरीन गाने। यू नो, आज के टाइम में लाइफ का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल है लाइफ में करना क्या है। और सबसे फनी बात जानते हैं क्या है? सबसे फनी बात ये है कि ये सवाल सबके पास है पर आंसर किसी के पास नहीं है। स्कूल खत्म होता है, कॉलेज आता है और लोग पूछने लग जाते हैं, क्या बनना है, कहाँ जाना है, फ्यूचर क्या है? और हम कुछ सोचते रहते हैं कि मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या है, तो मैं इसको कैसे बताऊं? यू नो, जब हम दूसरों को देखते हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो सबको देखकर बस यही लगता है कि सबको पता तो है उन्हें क्या करना है, हम तो सिर्फ कन्फ्यूज्ड हैं। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, आप कन्फ्यूज्ड नहीं है, आप अपने लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन तलाश रहे हैं। बट करियर ऐसा होना चाहिए जहां काम करके आपको खुशी मिले, जिस काम को करने का आपका मन करे, जिसको पैशन के साथ कर पाए। सिर्फ काम खत्म करके सैलरी उठाने का काम जो है वो उस पैशन में, उस करियर में ना हो और जिंदगी को आप अपनी जी पाए उस करियर के साथ। आइए इसी बात पर आपको आगे लेकर चलती हूँ, एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और यूं ही सुनते रहिए। जी हाँ, इट हैपेंस ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन 1701।

इटहैपेंस पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप रेडियो प्रस्वानी पर, और इटहैपेंस के साथ ये जो हमारी आपकी बातें, जो हमारी आपकी गुफ्तगू चल रही है, ये हमें एहसास दिला रही है कि यार जब दो लोग बैठ जाते हैं ना तो कहाँ कहाँ से बातें निकलती हैं बॉस। हाँ मतलब धरती आसमान एक हो जाए लेकिन लोगों की बातें ना खत्म हो, बस बैठ जाए एक बार साथ में। मुझे तो लगता है कि अगर कभी भूकंप आ रहा हो, पृथ्वी खत्म होने वाली हो, धरती का एंड हो, तो हम कहेंगे यार रुको हमारी बातें खत्म हो ले उसके बाद, है ना। यमराज आ जाए कहेंगे चलते हैं यार, बैठिए आप भी चाय पी जाइए, गपशप में शामिल हो जाइए। खासकर भाई लड़कियों के केस में तो यही होता है। और देखिए हमारे साथ आप भी बिजी हो गए, मेल लिसनर्स भी मतलब हमें सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, ऐसी बातें हैं हमारी। हाँ तो मैं कह रही थी ना, चाहे कुछ भी हो जाए गपशप खत्म नहीं होती, लेकिन भाई खत्म करते हैं। चलिए इस बात पर फिलहाल आपको एक गाना सुनवाई देते हैं, इंजॉय कीजिए और हमारे साथ सुनते रहिए इटहैपेंस जी आपके अपने रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM पर।